मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। वेव्स ओटीटी, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि। तदनुसार दिनांक 23 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में ही समाचार होंगे जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर

0: लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मेरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें मृदा में जीवांश का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम मृदा में जीवांश के महत्व के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जीवांश क्या है और इनसे हमारे पेड़ पौधों को क्या लाभ है? इस मिट्टी में बहुत सी वनस्पतियाँ पेड़ पौधे उगते हैं तथा बहुत से जीव जंतु भी इस पर आश्रित हैं। जीवन के अंत में ये जब मिट्टी में मिलते हैं तो सड़ गल कर जीवांश बनाते हैं। वास्तव में जीवांश का दायरा बहुत बड़ा है। ये ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं तथा पौधों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये जीवांश कई तरह के होते हैं और ज़मीन में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जब ये विघटित होते हैं तो अनेक पोषक तत्व इनसे बनते हैं जो कि पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। आइए अब यह जानें कि ये जीवांश किन किन स्रोतों से ज़मीन में आते हैं। जीवांश के सबसे बड़े स्रोत हमारे पेड़ पौधे हैं। जब हम कोई फसल लेते हैं तब उनकी जड़ों तथा तनों का कुछ भाग ज़मीन में ही रह जाता है, जो कि ज़मीन में मिलकर सड़कर जीवांश बनाता है। दूसरा, जब पौधा बढ़ता है तो इनकी जड़ों से एक रिसाव होता है, यह भी एक प्रकार का जीवांश है। जीवांश का तीसरा एवं मुख्य स्रोत है गोबर एवं कंपोस्ट की खाद। इन्हें जब हम मिट्टी में डालते हैं तो इनका विघटन होता है और फिर विभिन्न पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। हम मिट्टी में हरी खाद भी डालते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जानवर बांधते हैं वहाँ का बिछावन मलमूत्र से सड़कर जीवांश का निर्माण करता है। जो भी जीव जंतु जानवर इस ज़मीन पर पलते बढ़ते हैं वह भी अपनी जीवन लीला समाप्त करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिट्टी में ही मिलते हैं और जीवांश कहलाते हैं। अगर हम मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये कि हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे हैं। जीवांश से अनेक फायदे हैं। इनसे पहला लाभ यही है कि उपयोगी पोषक तत्वों की उपलब्धि होती है। जब मिट्टी में जीवांश पदार्थ डाले जाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका विघटन होता है। फलस्वरूप विभिन्न पोषक तत्व जमीन में उपलब्ध होकर पौधों को प्राप्त होते हैं। मिट्टी में बहुत से तत्व होते हैं। अगर इनमें जीवांश पदार्थ नहीं डाले जाते तो ये नष्ट जल्दी होते हैं और यदि जीवांश पदार्थ रहते हैं तो ये इन तत्वों के साथ मिलकर ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो नष्ट नहीं होने पाते और मिट्टी में बने रहते हैं। मृदा जीवांश मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है, उसकी संरचना में सुधार होता है तथा उसमें हवा पानी की उचित मात्रा रहती है। यदि ज़मीन में जीवांश की पर्याप्त मात्रा है तो उसमें मौजूद सूक्ष्म तत्वों की क्रियाशीलता भी बेहतर होती है, जो कि अधिक उपज के लिए ज़रूरी होता है। इनके प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। अगर हम इनका प्रयोग करें

0: ज़्यादा बलुअर मिट्टी में चिपकने की शक्ति एवं ज़्यादा चिकनी मिट्टियों में भुरभुरापन आता है। हाँ, अगर मिट्टी में जीवांश की कमी है तो सचेत हो जाएं, उसमें गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट की खाद डालें, हरी खाद डालें, या कुछ नहीं तो खेत में भेड़ ही बैठाएं, लेकिन करें कुछ ज़रूर। अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो एक आदर्श फसल चक्र के अनुसार उसमें दलहनी फसलों का समावेश करें, इससे भी कुछ जीवांश की पूर्ति होगी। अगर आपके खेत में फसलों के अवशेष पड़े हैं तो उन्हें आप बाहर निकालने की कोशिश न करें और न उन्हें जलाकर नष्ट करें, बल्कि जहाँ तक संभव हो उसे उसी खेत में सड़ा दें। ये जीवांश ही मिट्टी का भोजन है। अगर मृदा में जीवांश रहता है तो उसका कटाव भी कम होता है, क्योंकि ऐसी मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपके रहने के कारण अलग होकर बह नहीं पाते। अंत में हम यही कह सकते हैं कि मृदा में जीवांश का वही महत्व है जो कि शरीर में खून का है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, जिसमें मृदा में जीवांश का महत्व इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। भगवान राम के प्रिय बलशाली हनुमान, जिनके लिए जग का कोई भी कार्य कठिन नहीं है, उनकी उपासना से हम सभी के सभी कार्य सिद्ध होते हैं।

कृष्ण भक्ति को जिसने भी अपने जीवन का आधार बना लिया, वह इस जीवन में सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे हरिओम शरण, अनूप जलोटा, प्रीति सागर, संध्या मुखर्जी और हरीश भारद्वाज। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु। विषय है धर्म और जीवन। आलेख एवं वाचन है अरुण पांडे का।
1: धर्म की अवधारणा कई संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों का एक मूलभूत पहलू है, जो व्यक्तियों को जीवन में दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। धर्म को एक व्यक्ति का कर्तव्य या उद्देश्य माना जा सकता है, जो एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए उनके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। इस अर्थ में धर्म एक व्यक्तिगत दिशा सूचक यंत्र है, जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने और ऐसे विकल्प चुनने में मदद करता है जो उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। धर्म को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का पहला कदम ये समझना है कि ये क्या है और ये आपसे कैसे संबंधित है। धर्म आपके उद्देश्य या कर्तव्य की भावना है, जो आपको उन कार्यों और निर्णयों की ओर मार्गदर्शन करता है जो आपके मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप होते हैं। सनातन धर्म में धर्म व्यक्तिगत विकास और आत्म प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने धर्म की खोज करके और उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करके आप जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना का अनुभव कर सकते हैं और इस तरह से जी सकते हैं जो आपके प्रति सच्चा हो और आपके गहरे मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हो। जैसे ही आप ये यात्रा शुरू करते हैं, ध्यान, योग या सत्संग जैसी प्रथाओं में शामिल होना और किसी विश्वसनीय शिक्षक या गुरु से मार्गदर्शन लेना सहायक हो सकता है। हालांकि अपने धर्म की खोज करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और अपने मूल्यों और विश्वासों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। धैर्य और दृढ़ता के साथ आप अपने धर्म की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं और इसे सार्थक और संतोषजनक तरीके से अपने जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने धर्म को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये क्या दर्शाता है, तो ये मान लें कि ये समय धर्म को दैनिक जीवन में शामिल करने का सबसे उपयुक्त समय है। प्रथम चरण के रूप में आत्मचिंतन को प्राथमिकता दें। अपने धर्म के संपर्क में रहने और ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है कि आपके कार्य और निर्णय आपके मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हों। अपने विचारों और भावनाओं पर विचार करने के लिए हर दिन समय निकालें और इस बारे में ईमानदार रहें कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। अपने धर्म पर विचार करें और पूछें कि कौन से विकल्प आपके उद्देश्य और मूल्यों के अनुरूप हैं। ये आपको अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में मदद कर सकता है, ये जानते हुए कि आप उस चीज के तहत कार्य कर रहे हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। आप अपने दैनिक जीवन में धर्म को शामिल करके बड़े

0: उद्देश्य, शिक्षा और संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन में अधिक गहन अर्थ की तलाश कर रहे हों या ऐसे तरीके से जीना चाहते हों जो आपको अधिक प्रामाणिक लगें, धर्म निर्णय लेने और जीवन जीने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान कर सकता है, वो जीवन जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। धर्म केंद्रित जीवन जीने के सबसे संतुष्टिदायक और शांतिपूर्ण तरीकों में से एक माना जा सकता है। ये किसी उद्देश्य और मूल्य के अनुरूप जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आंतरिक संतुष्टि और खुशी की भावना पैदा होती है। धर्म केंद्रित जीवन अपनाने के अनेक लाभ हैं और इसका व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके लाभ दूरगामी हैं और किसी के समग्र कल्याण पर गहन प्रभाव डालते हैं। अपने उद्देश्य और मूल्यों के साथ जुड़कर व्यक्ति अधिक मानसिक स्पष्टता, मजबूत रिश्ते और बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव कर सकता है, जिससे वो अधिक पूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। सनातन में धर्म मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है और इसे किसी की क्षमता को पूरा करने और आत्मिक संतोष प्राप्त करने के मार्ग के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म में धर्म का तात्पर्य बुद्ध की शिक्षाओं और आत्मज्ञान के मार्ग से है और जैन धर्म में अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के सिद्धांतों का पालन करना शामिल है। विशिष्ट परंपरा के बावजूद व्यापक संदेश स्पष्ट हैं। जीवन में अर्थ और खुशी ढूंढने में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने धर्म को अपनाकर और अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को जिम्मेदारी और नैतिक रूप से पूरा करने का प्रयास करके हम उद्देश्यपरक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। विषय था धर्म और जीवन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें पेट संबंधी रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश पांडे।
2: मैं डॉक्टर राजेश कुमार पांडे और आज स्वास्थ्य चर्चा में हमारा विषय है पेट संबंधी रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि रोगाः सर्वेपि मंदेग्नौ, अर्थात अधिकांश रोगों का मूल कारण जठराग्नि यानी पाचन शक्ति की विकृति है। यदि हमारी पाचन शक्ति स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहता है और यदि पाचन बिगड़ जाता है तो अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है जो हमारे खाए हुए अन्न को पचाकर शरीर को पोषण देती है। इन 13 प्रकार की अग्नियों में 5 हमारे पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अपनी अपनी अग्नियां होती हैं। 7 धात्वाग्नि होती है जो हमारे शरीर के 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का पोषण करती हैं। और 13वीं अग्नि जठराग्नि होती है जो मुख्य रूप से पेट में होती है। इसमें हमारे शरीर में अन्न को पचाने वाले पाचक रस होते हैं। हमारी जठराग्नि जब मंद होती है तो हमारा भोजन ठीक से पच नहीं पाता है और धीरे धीरे आगे की पंचमहाभूताग्नि और 7 जो धात्वाग्नियां हैं वो भी मंद पड़ने लगती हैं। तब शरीर को पोषण नहीं मिलता है और पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज की शिकायत, भूख ना लगना और सीने में जलन होना आदि लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर की 7 धात्वाग्नियां जब मंद या कमजोर पड़ने लगती हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इससे मोटापा बढ़ता है, सुस्ती महसूस होती है, कमजोरी लगने लगती है और बहुत दिनों तक इसका उपचार नहीं करने से आगे चलकर ये कुपोषण शरीर में मोटापा, उच्च रक्तचाप या डायबिटीज या हृदय रोग आदि बीमारियां होने की संभावना को बढ़ा देता है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में अनियमित खानपान, फास्ट फूड, तनाव और शारीरिक श्रम की कमी पेट संबंधी रोग तेजी से बढ़ा रही है। गैस, अपच, कब्ज, अम्लपित्त, पेट दर्द, भूख न लगना, पेट फूलना, ऐसी समस्याएं अब सामान्य हो गई हैं। इसका कारण हमारे खानपान की आदत, अनियमित दिनचर्या तो है ही, इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में अंधाधुंध केमिकल और पेस्टिसाइड का प्रयोग भी इसका कारण

0: माना जाता है। बाजार में मिलने वाली फल, सब्जी और दूसरी खाद्य पदार्थों में भी लाभ के लिए या सुंदर और ताज़ा दिखने के लिए बहुत सारे हानिकारक केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पे पड़ता है और हमारा पाचन खराब होने लगता है। मेरी क्लिनिक पर आने वाले 90% रोगी ये शिकायत करते हैं कि मेरी पेट साफ नहीं होता है। ये पेट साफ ना होने वाली बीमारी आजकल महामारी की तरह फैली हुई है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पेट साफ ना होने वाली बीमारी 50% से ज़्यादा मरीजों में मानसिक होता है। वास्तव में जिसे हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इसमें मल कड़ा होता है। यदि आपका मल कड़ा नहीं होता तो आपको कब्ज की बीमारी नहीं है, यह जान लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग अमीबियसिस, म्यूकस कोलाइटिस या IBS जैसी बीमारी को कब्ज समझ लेते हैं और पेट साफ करने की दवा खाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। अंत में एक बात आकाशवाणी के प्रिय श्रोताओं के लिए बताना चाहता हूँ कि इस समय गर्मी अपने चरम पर चल रही है, तो इससे बचाव करें। बाहर खुले में रखा हुआ कोई चीज़ ना खाएं, बासी और दूषित भोजन ना करें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। जौ और चने का सत्तू पानी में घोलकर पीने से पेट ठंडा रहता है और पाचन भी ठीक रहता है। यदि पतला दस्त हो, उल्टी हो रही हो, तो किसी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। बहुत
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में पेट संबंधी रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेश पांडे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजड़ों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कौशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। आज के गायक कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर और साथी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 10:30 पर और सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 आप सुनेंगे खेल दर्पण और सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, ये दोनों कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर और सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे शहनाई वादन। कलाकार होंगे उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:45 पर आप सुनेंगे रामजी मिश्रा का एकल तबला वादन। रात्रि 8 सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजल। कलाकार होंगे अशोक खोसला। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:30 पर सुनिएगा प्रियंका सहवाल के गाए भजन।

सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे हेमंत कुमार श्रीवास्तव। इनकी लोकगीत का आनंद आप कृषि जगत कार्यक्रम में भी ले सकते हैं। समय होगा शाम 6:30। कृषि जगत में आप सुनेंगे डॉक्टर सुरेश कुमार कन्नौजिया की बातचीत। विषय होगा अरहर की खेती की उन्नत तकनीक। युवा कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना, धरती के गीत। ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:00, जिसमें आज आप सुनेंगे कुमाऊनी गीत। कलाकार होंगी विमला बोरा और साथी। दिन 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम अंगनैया, जिसमें चर्चा गीत संगीत के अलावा होगी शिखा सिंह की बातचीत।

0: बदलती जीवन शैली और रसायन चिकित्सा की आवश्यकता। सुहाने तराने ओल्ड इज गोल्ड, ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन 2:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे झंकार में, शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे, शाम 7:31 पर रसरंग में, और रात्रि 8:15 पर रस माधुरी में। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा का समय होगा सुबह 8:45, और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: प्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ता। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्र प्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छ भारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन्, येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः, येन विशालः नव मध्यमवर्गः उद्भूतः, आर्थिकक्रियाकलापाश्च प्रवर्धिताः। लखनऊनगरे 15 छात्राणां मृत्योः दुःखद अग्निघटनायाः अनन्तरं द्रुत कार्याचरणस्यान्तर्गतम् आरक्षकाः गतरात्रौ 6 जनानां विरुद्धम् FIR इति पञ्जीकृतवन्तः, तेषु 4 च निगडिताः। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशानुसारं लखनऊ विकास प्राधिकरणस्य अग्निशामक विभागस्य विद्युत् विभागस्य च 4 अधिकारिणः अपि निलम्बिताः अभवन्। लखनऊनगरे अग्निघटनायाः सन्दर्भे अलीगंजनगरस्य आरक्षकैः BNS तथा उत्तरप्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियमस्यान्तर्गतं प्रासंगिकखण्डेषु 6 अभियुक्तानाम् अन्यान् च उत्तरदायि जनानां विरुद्धं FIR पञ्जीकृतम् अस्ति। यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत् तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माणस्य विषये 16-2000 वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत्, परञ्च मासद्वयाभ्यन्तरे एव आदेशः निरस्तः अभवत्। एतदतिरिच्य राज्यसर्वकारेण अग्निघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशोऽपि प्रदत्तः। घटनायाः अन्वेषणार्थं SIT इति विशेष अन्वेषण दलस्य निर्माणमपि कृतमस्ति। दलं 7 दिनेषु एव स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति। ह्यः अपराह्णे दुःखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं 15 जनाः मृताः, तेषु अधिकतया 16-25 वर्षीयाः छात्राः आसन्। अलीगंजनगरस्य पुरैनिया क्षेत्रे एकस्य आपणस्य उपरि कार्यरते एनिमेशन कोचिंग केन्द्रे अग्निप्रकोप

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ स्तुति और मैं लेकर आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ हाँ बनारस, जानती हूँ बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ और यकीन मानिए आप सब से फिर से मुलाकात का अपना ही एक अलग सुख होता है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने दिन की अच्छी सी शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ कर रहे होंगे। तो बनारस, आज के इस खूबसूरत सुबह में हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो केवल खेलों का नहीं बल्कि सपनों, संघर्ष और इंसानी जज्बे का उत्सव है। जी हाँ, आज है 23 जून, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। बनारस, ओलंपिक केवल पदकों की कहानी नहीं है, ये उन लाखों खिलाड़ियों के सपनों के नाम है जो वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बाद दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सपना देखते हैं। आपको बता दें, बनारस की वर्ष 1948 से हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। दरअसल 23 जून 1894 को आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी गई थी और तभी से ये दिन दुनिया भर में खेल भावना, एकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यही नहीं श्रोताओं, ओलंपिक हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। जी हाँ, और वो संदेश यह है कि जीतना ही सब कुछ नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी और पूरे मन से प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला हर खिलाड़ी अपने आप में एक विजेता माना जाता है। और वहीं जब बात भारत की हो तो हमारे खिलाड़ियों ने भी समय समय पर दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जी हाँ, चाहे फिर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हो जिन्होंने भारतीय हॉकी को नई पहचान दी, या फिर अभिनव बिंद्रा जिन्होंने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, साइना नेहवाल, मैरी कॉम और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से देश का गौरव बढ़ाया है। तो बनारस, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर क्यों ना हम भी अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लें। जरूरी नहीं कि हम सभी खिलाड़ी बने, लेकिन अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कुछ समय व्यायाम, योग, दौड़ या किसी खेल के लिए जरूर निकालें, क्योंकि खेल केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना को भी मजबूत करता है। और शायद यही वजह है

कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इसी तरह करेंगे और भी बहुत सारी बातें, कहीं जाइएगा मत। लीजिए सुनिए ये प्यार सा ट्रैक ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी।

वेलकम बैक बनारस टू योर ओनली शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो बनारस, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। काशी के समग्र विकास परियोजना संरक्षण और आधुनिक नगरीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोमवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण और ONGC के बीच 260 करोड़ की वरुणा रिवर फ्रंट विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये परियोजना वरुणा नदी के पुनर्जीवन और उसके तटों के सुनियोजित विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार ये पहल प्रधानमंत्री के विकसित भारत और काशी के समग्र विकास के

संकल्प के अनुरूप है। साथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे आधारभूत संरचना और नगरीय विकास कार्यों को भी नई गति प्रदान करेगी। एमओयू पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और ONGC के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। परियोजना को आकार देने में मंडलायुक्त और BDA अध्यक्ष के मार्गदर्शन और प्रयासों की अहम भूमिका रही। परियोजना के लिए ONGC अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना के तहत वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत वरुणा नदी के तटों को पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध, नागरिक सुविधाओं से युक्त और आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना के तहत नदी किनारे हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा पैदल पथ, सार्वजनिक उपयोग के खुले स्थल, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे न केवल नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पारिस्थितिकीय संतुलन और सतत शहरी विकास के लक्ष्य भी मजबूत होंगे। साथ ही आपको बता दें बनारस की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा नदेसर तालाब के पास एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी सेंटर विकसित करने की योजना बनाई गई है। वाराणसी में पूर्वांचल का पहला स्पोर्ट्स सिटी सेंटर होगा, जहां आप अपना मनपसंद खेल खेलने के लिए ऑनलाइन प्री बुकिंग भी कर सकेंगे। स्पोर्ट्स सिटी सेंटर की ये योजना वास्तव में वाराणसी और पूरे पूर्वांचल के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, जहां फिटनेस, मनोरंजन और प्रकृति के सौंदर्य का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि प्रस्तावित मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जोन में पिकल बॉल, लॉन टेनिस, बॉक्स क्रिकेट और स्केटिंग जैसे विभिन्न खेल गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही योगाभ्यास के लिए भी विशेष स्थान निर्धारित किए जाएंगे। पूरा परिसर दिव्यांग जनों के अनुकूल होगा। स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने जानकारी दिया कि इस स्पोर्ट्स सेंटर की एक खास विशेषता ये है कि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार अपने पसंदीदा खेल के लिए स्लॉट की ऑनलाइन प्री बुकिंग कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और खेलने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए भी ये स्थान बेहद खास होगा। नदेसर तालाब में बोटिंग की सुविधा, आकर्षक फाउंटेन और हरियाली से भरपूर वातावरण लोगों को सुकून और आनंद का अद्भुत अनुभव देगा। वहीं आधुनिक फूड ट्रक और फूड कोर्ट, ब्रेकफास्ट मिक्स, स्प्राउट आदि जैसे स्वास्थ्य कुजीन कैफे की स्थापना से न केवल लोगों को बेहतरीन खानपान मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। वहीं आपको बता दें बनारस की बेसिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विद्यालयों में नामांकन, छात्र उपस्थिति, निपुण भारत मिशन, चहक कार्यक्रम और विभिन्न निर्माण कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, डाइट प्राचार्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान चहक कार्यक्रम और DC परीक्षण की प्रगति का आकलन किया गया। साथ ही विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। बैठक में विद्यालय भवनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा विद्यालयों में छात्र नामांकन और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की प्रगति पर विचार विमर्श किया गया। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए सभी संबंधित

विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। बैठक के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामने आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी योजनाओं और लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। इसके साथ ही बनारस शहर की जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महापौर अशोक कुमार तिवारी ने जनसुनवाई व्यवस्था का विस्तार किया है। अब वो प्रत्येक सोमवार को रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भी आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। नई व्यवस्था के तहत सोमवार को पहली बार आयोजित जनसुनवाई में महापौर ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। महापौर अशोक कुमार तिवारी पहले से ही प्रत्येक मंगलवार रविंद्रपुरी स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय में जनसुनवाई करते रहे हैं। अब रोहनिया क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय में भी जनसुनवाई शुरू की गई है। इससे क्षेत्रीय लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शहर के दूसरे हिस्सों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था के पहले दिन महापौर सुबह से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई में मौजूद रहे। इस दौरान वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंच नागरिकों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। महापौर ने एक एक शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और समस्याओं के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जनता की सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच सीधा संवाद लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अधिकारियों से भी जन समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और तत्परता दिखाने की अपेक्षा की। जनसुनवाई के दौरान सबसे अधिक शिकायतें सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, पथ प्रकाश और सड़कों की समस्याओं से संबंधित प्राप्त हुई। महापौर ने इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। नई जनसुनवाई व्यवस्था से रोहनिया और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम का मानना है कि इससे जन समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और अधिक सुगम और प्रभावी बनेगी। तो ये था बनारस देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। इसी के साथ बनारस, अब मुझे यानी स्थिति को दीजिए अनुमति। मिलूंगी आप सबसे फिर एक दिन, फिर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी

0: मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: खुद बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को

0: संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरा छोड़कर लखनऊ आए और सीधे घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली और बाद में केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस इमारत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूद कर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, तुषाक कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख

0: अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई मंत्रियों ने लखनऊ के इस अग्निकांड को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक तथा उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।
1: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे CBG प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य और व्यापार, पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई

0: की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शहनाई वादन। कलाकार हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी। राग है बिलास खानी तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं कुमार लाल मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी का शहनाई वादन। अभी आपने सुना राग बिलास खानी तोड़ी, तबला संगति थी कुमार लाल मिश्रा की। अब सुनिए उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी का बजाया भैरवी में धुन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं कुमार लाल मिश्रा।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी का शहनाई पर बजाया राग बिलास खानी तोड़ी और भैरवी में धुन। तबला संगति थी कुमार लाल मिश्रा की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है। इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैलाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित

0: चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6 व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद

0: भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Barma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड Nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
2: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi itna fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल प्रेजेंट द पद्मा अवार्ड्स ड्यूरिंग द सेकेंड सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन दिस इवनिंग। Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan, and 130.

0: India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेरे एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तय अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तज़किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत के पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार की गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूँ।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तेसादी सरगर्मियों को तकवीयत मिली है।
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, नियो मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड 3 जुमरों, पद्म विभूषण,

0: पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65 पद्म अवार्ड सता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा अवार्ड गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनत, अदविया, अदब व तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड अदा किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खुसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
2: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको मनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मज़कूरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नष्ट किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मजकूरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मजबूत करने और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमूई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाई हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में

0: अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा जरई जरूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने ये जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहिमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुक्काम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस एलएनजी की प्रोसेसिंग के मकाम पर यह तकनीकी हादसा पेश आया। कतर की तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल सुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम व सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की दो रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खुसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और US ओपन सुपर बैडमिंटन

0: ओपन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें
7: 0542227658
8: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

कार्यक्रम मधुरमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव का नमस्कार। आज मधुरिमा में बातें होंगी सिल्वर स्क्रीन के एक ऐसे चेहरे की जिनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है, एक ऐसी कशिश जो आपको डरा भी सकती है और पल भर में आपको प्यार में डुबो सकती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक ऐसा नगीना जिसने पहले विलेन के रूप में तहलका मचाया और फिर हीरो बनकर दिलों पर राज किया और फिर राजनीति के मंच पर भी अपनी धाक जमाई। तो चलिए अब करते हैं इस सस्पेंस को खत्म और बताते हैं आपको उनका नाम। वो स्टार हैं दमदार आवाज के मालिक राज बब्बर और आज है उनका जन्मदिन। तो चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म आप तो ऐसे न थे से ये खूबसूरत सा गाना।

0: उन्होंने निकाह, आज की आवाज, प्रेम गीत और घायल जैसी कई यादगार फिल्में दी। अब मैं आपको सुनवा रही हूँ उनकी सुपरहिट फिल्म निकाह से ये गाना, महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: अभी अलविदा मत कर।

उत्तर प्रदेश के टुंडला में 23 जून 1952 को जन्मे राज बब्बर ने जब फिल्मों में कदम रखा तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक थिएटर का कलाकार बॉलीवुड की कमर्शियल दुनिया की परिभाषा बदल देगा। साल 1977 में फिल्म किस्सा कुर्सी का से उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 1980 में आई बीआर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू से। इस फिल्म में उनके विलेन के किरदार ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए और इस फिल्म के बाद वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए।

निकाह फिल्म में राज बब्बर के संयमित अभिनय को आज भी सराहा जाता है। गुलाम अली साहब की गजलें और रवि का संगीत इस फिल्म की जान थे। फिल्म प्रेम गीत में होठों से छूलो तुम, इस गीत ने राज बब्बर के अभिनय को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और राज बब्बर रोमांटिक और संजीदा किरदारों की पहली पसंद बन गए। तो चलिए सुनते हैं फिल्म प्रेम गीत से ये गीत।

राज बब्बर की खासियत थी कि उनकी कड़क आवाज और संजीदा अभिनय। स्क्रीन पर उनका डायलॉग डिलीवरी का अंदाज बेहतरीन था। फिल्मों के साथ 90 के दशक में उन्होंने राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ाया। वो 3 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। राज बब्बर ने अपनी मिट्टी की भाषा यानी पंजाबी भाषा में भी ऊंचा मुकाम हासिल किया। साल 1986 में आई फिल्म लोंग द लश्कारा और 1989 में आई मड़ी दा दीवा में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया।

भारतीय कला और सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च सांस्कृतिक पुरस्कार यश भारती उन्हें प्रदान किया गया। 5 बार अपने दमदार किरदारों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया और स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह पर बनी फिल्म शहीद उधम सिंह को सन 2000 में स्क्रीन अवार्ड्स में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय सिनेमा के अंतर्गत प्राइड ऑफ पंजाब सम्मान भी उन्हें मिला।

आज भी राजबब्बर चरित्र अभिनेता के तौर पर फिल्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म ओटीटी से जुड़े हुए हैं। आज उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी वाराणसी परिवार की तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वो इसी तरह अपने बेहतरीन आवाज और गंभीर अभिनय शैली के साथ फिल्मों में सक्रिय रहें। आज का मधुरिमा का ये सफर बस यहीं तक। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव के साथ। अब दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। योग प्रशिक्षक शकिन गुप्ता, सुनीता कुशवाहा ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। योग सप्ताह के तहत 18 जून को विजय नगर पक्षी विहार, 19 जून को जैन तीर्थंकर मंदिर तथा 20 जून को आधारशिला वृद्धाश्रम एवं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर योग किया। योग शिविर में शामिल 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और आज विश्व में 170 से अधिक देशों में लोग योग अपना रहे हैं।
3: इस बार जो थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए, वो मंदिरों में भजन पूजन रामायण गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जब तक किए कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास नित्य करें, ताकि हम करेंगे वृद्ध जन तो हमारे बच्चे नाती पोते सब उसको देख करके करेंगे और चारों तरफ जो है एक निरोग का जो वातावरण है वो तो कायम होगा।
2: उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्ध जनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है और योग के माध्यम से बुजुर्ग न केवल निरोगी रह सकते हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से महोबा में नया जिला विकास प्रबंधक कार्यालय स्थापित कर दिया है। इससे अब जिले में कृषि व ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अभी तक हमीरपुर के जिला विकास कार्यालय की ओर से महोबा जिले में नाबार्ड की गतिविधियां संचालित होती थीं। महोबा की विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने यह कार्यालय खोला है, ताकि बेहतर पहुँच, हितधारकों के साथ निकट समन्वय स्थापित हो सके। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर पुनीत कुमार ने बताया कि नाबार्ड पहले से ही महोबा में कई योजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, किसान समूह, वाटर सेड, विकास व आजीविका संवर्धन शामिल हैं। अब ऋण प्रवाह में सुधार होगा और जनपद के ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब तक मोरंग और गिट्टी के लिए पहचान रखने वाला महोबा जनपद जल्द ही जिरकोनियम जैसे बहुमूल्य खनिज के लिए भी जाना जाएगा। हरपालपुर और महोबकंठ क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले जिरकोनियम भंडार की पुष्टि हुई है। इसके खनन का लाइसेंस बंगाल की माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को दिया गया है। जिरकोनियम का उपयोग दंत चिकित्सा, आभूषण निर्माण, रासायनिक उद्योगों और उच्च तापमान वाले संयंत्रों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस खनिज का भंडार मिला है। इससे महोबा को नई पहचान मिलेगी। इसके खनन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही खनन और उससे जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ेगा। महोबा देश के महत्वपूर्ण खनिज मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिरकोनियम उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश अब उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के बाद देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत महोबा जिले में प्याज लहसुन के आधुनिक भंडार गृह बनाए जाएंगे। इन्हें खास तौर पर बांस और टीन से तैयार किया जाएगा। यह सभी प्राकृतिक तरीके से बनेंगे। सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान देगी, ताकि पैदावार सुरक्षित रहे और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हो। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब 500 हेक्टेयर में प्याज और 200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। हर साल भंडारण न होने से 10-15% फसल बर्बाद हो जाती है। नए भंडार गृह बनाने से किसान अपनी उपज रोककर अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी देगी। योजना अंतर्गत कुल इकाई लागत का 50% या अधिकतम 30 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 13 साल बाद गोरखगिरी पहुंचे सीएम ने यहां रोपवे बनाने और इसे एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में

0: विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप मिसाइलों से पाकिस्तान और दुश्मन थर्रा रहा और यहां के देसावरी पान को पहचान और बीड़े के जरिए क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अर्जुन सहायक परियोजना, एन बेतवा लिंक और हर घर नल योजना का जिक्र किया, जिसने बुंदेलखंड की बहनों को पानी के संकट से मुक्ति दिलाई। महोबा जिले में शिक्षा और ज्ञान वर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सदर विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर एवं जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने संयुक्त रूप से राठ रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय में 5 स्मार्ट लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ किया।
1: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन श्रीवास्तव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार के 12 वर्ष सफल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान और जश्न मना रही है। इस अवसर पर भाजपा ने सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताया है। इस क्रम में भाजपा देश भर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित कर रही है। सरकार की इन बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए पार्टी द्वारा 5 विशेष बुकलेट भी जारी की गई है। पार्टी का संकल्प है कि इन नीतियों के आधार बनाकर साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विकास खंड परिसर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी ने सभी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद व विधायक ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया, साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों में साझा की।
3: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी विकास खंडों पे केंद्र सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और एक स्वास्थ्य शिविर 14 जून से 16 जून तक भी लगाया गया।
2: जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित हिंदू भवन में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर 55 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित हिंदू संगठन के लोग व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना भी की। जनपद सिद्धार्थनगर की थाना सोरतगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है कि अपराध व अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिषेक महाजन के नेतृत्व में जिले की पुलिस व सहयोगी पुलिस टीम सक्रिय है। सोरतगढ़ थाना अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, SI संतोष यादव, मैं पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर गंचौरा तालाब के पास एक युवक को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रुपए नगद बरामद किया। जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा का भव्य उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वल और माल्यार्पण किया। इसके साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति की गयी, जिसकी मुख्य अतिथि द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गयी। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बघौली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्व मंत्री विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के द्वारा 12 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा और बताया गया कि किस प्रकार से इन 12 सालों में केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार विकास के कार्य किए गए। सिद्धार्थनगर जिले में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बांसी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान SDRF प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका तथा

0: आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन कर आपात स्थिति से त्वरित कार्रवाई के तैयारियों का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए इन सीसीटीवी कैमरों और ककराहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर अस्थायी कमरा और शौचालय का निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

थाना आदमपुर, कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अनवर अली पुत्र शेखावत अली नवाबपुर आदमपुर वाराणसी के निवासी हैं। अनवर अली की उम्र 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट 7 इंच, रंग सांवला एवं चेहरा लंबा है। विशिष्ट पहचान, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये दिनांक 11 अप्रैल 2026 को रात्रि 9:30 से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने सफ़ेद रंग की शर्ट एवं काले रंग की पैंट पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना आदमपुर जनपद वाराणसी को सूचित करें।

थाना आदमपुर, कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार राधा देवी, पत्नी ब्रिजेश कुमार, चंदोपुरा बलुआ वीर, थाना आदमपुर, वाराणसी की निवासी हैं। राधा देवी की उम्र 36 वर्ष, लंबाई 135 सेंटीमीटर, रंग सांवला एवं चेहरा लंबा है। विशिष्ट पहचान, इनके पैरों की अंगुलियां विकृत हैं। ये दिनांक 10 अप्रैल 2026 को 12 बजे दिन से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना आदमपुर जनपद वाराणसी को सूचित करें। थाना भेलूपुर, सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रियंका, पुत्री स्वर्गीय हरिप्रसाद, किरहिया अखाड़ा खुजवा वाराणसी की निवासी हैं। प्रियंका की उम्र 24 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा एवं चेहरा गोल है। ये दिनांक 11 अप्रैल 2026 से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने काला सलवार सूट पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी को सूचित करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: गुनाहों से बचने की कोशिश करना और जहाँ तक हो सके सुन्नतों को आम करना और ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों पर अमल करना। तो सामईन बज़्म, इस ख़ास दिन, इस ख़ास माह और इन 10 दिनों की फजीलत को देखते हुए हमने आज आपको एक फीचर सुनवाने का एहतमाम किया है, माहे शहादत मुहर्रमुल हराम। इस फीचर में सदाकार हैं फरीदुल्ला खान और फायजा जुबैर, तहरीर है फायजा जुबैर की। समाप्त फरमाइए ये फीचर।
1: हिंदुस्तान, बल्कि यूं कहें कि तमाम दुनिया में हर मजहब, हर कौम और हर फिरके के लोग त्योहार मनाते हैं। त्योहार के माना हैं तकरीब के, जश्न के और खुशी के। त्योहार जो कि मनाए जाते हैं वक्ते मुकर्ररा पर, किसी वाक़े, किसी दिन या फिर किसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत की याद में।
2: ऐसे ही मुसलमानों की एक जमात जो कि कहलाई जाती है शिया, वो भी अपना एक अलग त्योहार मनाते हैं। मगर सामीन, ये त्योहार बजाय खुशी और जश्न के होता है गम का, मातम का त्योहार। ये त्योहार याद किया जाता है मुहर्रम के नाम से। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम जैसे ही शुरू होता है, मुसलमानों में ताज़ा हो जाती है याद उन शहदाए करबला की, जिन्होंने अपनी बेशकीमती जाने, अपना मालो असबाब, अपना साजो सामान और अपने अहलो अयाल सब कुर्बान कर दिए अल्लाह की राह में।
1: इस्लामी तारीख पुर है ऐसे वाकयात से जो अहले इस्लाम के लिए जरिया बन गए हैं, पुख्तगी ईमान का, यकीने कामिल का।
2: इस्लामी तारीख तो भरी पड़ी है ऐसे कफन बर्दोश मुजाहिदों से, ऐसे शहादत के मतवालों से जिनकी जूफिशां रोजे अव्वल से ताबत जगमगाती रहेगी।
1: ऐसे ही मुहर्रम का महीना यादगार है एक अजीम और बेमिसाल कुर्बानी के लिए।
2: मुहर्रम के महीने में तमाम दुनिया के मुसलमान याद करते हैं हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफकाए दीन की शहादत के अलमनाक वाकयात, और ताज़ा करते हैं अपने सीनों में ईमान को और गुनगाते हैं उन शहदा के ईसार, शुजात और हक परस्ती के।
1: वाकिये करबला का तारीखी पस मंजर ये था कि पैगंबरे इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन मुस्तहिक थे खिलाफते इस्लाम के, लेकिन दुश्मने इस्लाम यजीद जानशीन हो गया तख्ते खिलाफत पर।
2: दुश्मने इस्लाम यजीद ने अपनी ताकत और शोहरत के बल पर हजरत इमाम हसन को जहर देकर मरवा डाला और मजबूर कर दिया इमाम हुसैन को जिला वतनी पर। लेकिन बहुत से अहले ईमान जो पसंद करते थे हक व सदाकत को, जो जानते थे इमाम हसन और हुसैन की पाकबाजी और सदाकत को, वो तमाम लोग आ मिले इमाम हुसैन के साथ और जंग आजमा हुए यजीद के खिलाफ। हक व नाहक की ये जंग तकरीबन जारी रही 20 साल तक, और आखिरकार मैदाने करबला में इख्तिताम हुआ इस खूनी दास्तान का। यजीद की मुसल्लह फौजों ने घेर लिया इमाम हुसैन की मुट्ठी भर फौज को, और तरह तरह की तकालीफ और परेशानियां देकर हजरत इमाम हुसैन की फौज को बेबस कर दिया। खुर्दोनोश के जराए मुनकते कर दिए, महरूम कर दिया गया बच्चों, बूढ़ों और औरतों को पानी की एक एक बूंद से भी। भूख और प्यास की शिद्दत से हर शख्स निढाल और जां बलक था। आखिरकार करबला की फैसला कुन जंग खत्म हुई 10 दिन के मारके के बाद।
1: दर हकीकत ये जंग जंग थी हक व बातिल की, और मारका था दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ। ये था वो पस मंजर जो सबब है मुहर्रम को याद रखने का। इसी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख कहलाई जाती है यौमे आशूरा।
2: हजरत इमाम हुसैन के चाहने वालों की न उस वक्त कमी थी और न अब है। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी حضرت امام حسن

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542।

0: 6 5 8।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें, 0542227658।
2: प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव। पहले सुनिए इनके स्वर में पचरा।

अभी आपने सुना हेमंत कुमार श्रीवास्तव के स्वर में पचरा। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए इन्हीं के स्वर में कहरवा।

0: चलू सचहूँ बहुत हौ दानी सचहूँ बहुत हौ दानी।
1: हेमंत कुमार श्रीवास्तव के गाए कहरवा के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव सोटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी
2: हवा। झंकार में पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अब सुनिए साथिया फिल्म से ये गाना। आवाजें हैं साधना सरगम और मधुश्री की, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, डंकी फिल्म से। शब्द रचना है इरशाद कामिल की और धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज़ों में अब सुनिए सरफरोश फिल्म का ये गाना। गीतकार हैं समीर और संगीत है जतिन ललित का।
1: अजी डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: झंकार में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। ये गीत गाया है उदित नारायण ने, संगीत है जतिन ललित का और इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने।

झंकार में अब सुनिए फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये गीत। आवाजें हैं मारिया डेल मॉर फर्नांडिस, फरहान अख्तर, अभय देओल और ऋतिक रोशन की। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: dedican, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita.
1: Nigahone, nigahon se, kahi armaan ki dasta hai señorita.
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 10:30 से आप सुनेंगे पद्मा पीपल्स ऑन आकाशवाणी हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजी लाल यादव के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संजय तिवारी।
1: सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी।
1: जब आपको ये पता चला कि आपको चयनित किया गया है, कैसा लगा आपको उस टाइम?
2: मैं मुरादाबाद बुद्ध विहार कॉलोनी में एक प्रोग्राम लगा था, तो उसमें था। वहाँ पर जो है हमारे डीआरसी ऑफिस के योगेश कुमार जी थे उपायुक्त, और डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे आनंद सिंह। उन्होंने बताया कि भाई वो घोषणा हो गई है, तो वो जो है हटापट दौड़े दौड़े आए वो। उन्होंने सबसे पहले डीएम साहब ने और कमिश्नर साहब ने बधाई दी।
1: आपने ऐसा क्या किया है, आपके काम की क्या खासियत है, क्या काम करते हैं आप, इसके बारे में डिटेल से बताइए।
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1970 से बराबर काम कर रहा हूँ। बीच में बहुत कठिन आई, लेकिन काम नहीं छोड़ा मैंने इस काम को देखते हुए। और जो मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो बोले कि भाई ये इनको जो है इनाम इनाम मिले हुए हैं पहले से ही, तो सब कुछ देख कर जो है उन्होंने ऐसा किया। ये
1: क्या क्या काम करते हैं आप, कैसी नक्काशी करते हैं?
2: जब हम 20-22 साल की उम्र में थे पढ़ाई करने के बाद, तो हम श्री अमर सिंह जी से हमने काम सीखा। ये काम सीखने के उपरांत तो वहाँ जो है 3 साल की ट्रेनिंग चली थी सरकारी, तो उसमें जो है हमने ट्रेनिंग पाई, तो 100 रुपये महीना भी हमें मिलता था और काम भी सिखाते थे वो। इसके उपरांत तो जो है हम 4-5 साल तक वो काम किया, उच्च कोटि के हमने काम सीखे, जो कि आज हमारे जो है जीवन में काम आ रहे हैं वो। और हमने मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है। हमारी संगत जो रही वो ऐसी रही कि अपने ही मतलब सीनियर के साथ रहना, उनसे जानकारी लेना, उनके पास बैठना उठना, और यारों का भी हमें ज्ञान मिला।
1: काम के सिलसिले में आप पूरे देश में भी गए हैं और शिशु में भी गए हैं, तो वहाँ से क्या सीख मिली और क्या लेकर आए, क्या देकर आए वहाँ?
2: दिल्ली में गए थे, दिल्ली में जो है हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली डिजाइनों की, और डिजाइन सेंटर भी घूमे हम वहाँ पर, डिजाइन लेके वो ही आइटम पर जो है वो केड़ा, तो नया डिजाइन माना गया, तो हम जो है घूमते घूमते जो है ऑल इंडिया में पूरे घूम लिए, अपने काम का प्रदर्शन भी किया। और राजस्थान के हैं, और बेंगलोर में चित्रकला परिषद है, चित्रकला परिषद में जो है वहाँ पर हमने जो है पुरानी इमारतों का भी डिजाइन दिया, कैसे कैसे मतलब ये टहनी बनती है, कैसे डिजाइन बनते हैं, जो झालर वहाँ बन हुई है वही झालर हमने अपने आइटम पर बनाई है, तो उससे जो है नयापन आया।
1: विदेशों में कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या किया आपने?
2: विदेशों में हम बांग्लादेश गए, फ्रैंकफुर्ट जर्मन सिल्वर जर्मनी
1: जी,
2: तो वहाँ पर अपने काम का हमने डेमो किया, प्रदर्शन किया और बिक्री भी की।
1: तो अब जो है मौजूदा सरकार से, विशेष रूप से केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: केंद्र सरकार सही काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है हस्तशिल्पियों को। इसके अलावा हम तो यही चाहेंगे सरकार जो है किसी तरह की ऐसी योजना बनाए जिससे कि ये लड़के नई पीढ़ी के बच्चे जो है काम सीखें।
1: आप क्या चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस काम के लिए आगे आए?
2: हम तो चाहते हैं कि भाई कम से कम 30-40 बच्चों को ट्रेनिंग दें, तो उसमें से अगर 10 भी कामयाब हो गए तो काम बढ़ेगा।
1: आपने अपने घर में बच्चों को कितना ये हुनर जो है बांटा है, सिखाया है?
2: वैसे तो हमारी फैमिली में सभी लोग काम करते थे, हमारी वाइफ भी करती थी, हमारे 2 बेटे हैं ये भी करते, कुप सिंह जी है, इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है, ये काम कर रहे हैं और हमारा भी हाथ बटाते हैं।
1: इस काम को लेकर भविष्य कैसा दिखता आपको?
2: हाँ, भविष्य सही है, क्योंकि हमारा जो काम है वो साधारण काम नहीं है, हमारा उच्च कोटि का काम है, इसके कारीगर बहुत ही कम है।
1: तो आप चाहते हैं कि आप जैसे जो आपकी विशेषता है वो और नई पीढ़ी पे भी आए और लोग बताए?
2: हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारी मृत्यु के बाद जो है कम से कम नाम तो रहे कि भाई हमें जो है वहां से जानकारी मिली है, प्राप्त हुआ है, उनके शागिर्द हैं, काम सीखे कोई ना कोई लड़का, तो हम बता सकते हैं।
1: सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा काम करे जो ये आपका नक्काशी का काम लोग इंटरेस्ट लें, उसमें युवा इंटरेस्ट लें?

0: हाँ कर लो, 1 साल का तो वो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण ले, वो लड़का 1 साल में कारीगर बन जाएगा। वो इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले है, उसमें मास्टर प्राप्त उनके पद पर जो है वो चुने, हमें चुने है, किसी को चुने तो काम सीखना चाहिए, लगन से भी काम सिखाया उस आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, 1982 में मुझे मास्टर क्राफ्ट में उनके पद पर चयनित किया था, तो मैं उड़ीसा स्टेट गया था डिस्ट्रिक्ट पुरी, तो वहां मैंने लगभग 200 कारीगरों को काम सिखाया वहां पर, तो वहां कामयाब हो गए, तो मैंने 2 साल तक वहां पर रहा। हमने
1: आपको ये काम करते हुए कुछ सम्मान भी मिले हैं, क्या क्या अवार्ड मिले हैं अब तक आप?
0: मैं 1970 से तो काम में जुड़ा हुआ हूँ, काम करते करते उच्च कोटि का भी जो काम है उसकी गुणवत्ता जो हासिल की है मैंने, इसके बाद में जो है स्टेट अवार्ड मुझे 2 बार मिल गया, के बाद में नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल के बाद में शिल्प गुरु मिला, शिल्प गुरु के बाद में इसकी घोषणा हो गई। और मैंने जो अब तक प्रोग्राम किए हैं प्राइवेट नहीं किए हैं, सारे सरकारी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के जो एग्जीबिशन लगती हैं, ताल कटोरा, प्रगति मैदान, इंडिया गेट पे, सूरज कुंड मेला है, आगरा ताजमहोत्सव है, तो मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, तो वहां मेरी चर्चा होती है, सब टीवी पर दिखाते हैं।
1: आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन आड़े आई इसमें?
0: हाँ 7वीं पास किया था, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, जिसका कि मतलब बड़ा मुश्किल था आलन पालन, तो बस पढ़ाई करने वाला इस काम में लग गया। काम करने के बाद तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि भाई हम जो है मजदूरी ना करके जो है सप्लाई का काम करें, खुद बना के बिक्री करें, तो जो हमारे सीनियर थे घासीराम जी, उनके साथ मिलकर मैंने काम किया ही है, तो सप्लाई का काम भी मेरा चल गया, और सप्लाई काम ऐसा चला कि अब हर स्टेट में हमारा माल जाता है, सरकारी शोरूम में मेरी सप्लाई रहती है।
1: आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी हुनर सीख ले तो बहुत ऊंचे मकाम पर
0: जी
1: जा सकता
0: जी
1: है, तो
0: अपना रोजगार जो है खुद मत चला सकता।
1: और फेमस भी हो सकता है, फेम भी
0: हाँ
1: पा सकता है।
0: जी, मुझे एक साहब मिल गए थे वही उड़ीसा प्रोग्राम में, तो वो आए, उन्होंने बधाई दी, बोले चिरंजीवी लाल आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। बोले वेशभूषा से और आपके आचरण से तो नहीं मालूम होता है, तो मैंने कहा मैं तो साहब साधारण रहता हूँ, मैं तो कारीगर आदमी हूँ, तो बहुत खुश हुए वो।
1: तो ये अगर रोजगार इसमें कमाना चाहते हैं जो युवा हैं खास तौर से, तो
0: जी
1: उनके लिए क्या कहने चाहिए?
0: देखो युवा जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रुचि होनी चाहिए मन में, तो जब रुचि होगी अभी तो काम कर पाएगा, रुचि है उसको कंप्यूटर काम में, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई ये वो भी करो, इसमें भी तो आप थोड़ा सा समय दो, वो भी काम करेगा आपका कंप्यूटर भी।
1: तो सरकार ऐसा क्या करे जो, क्योंकि ये जो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, बड़ी ये महत्वपूर्ण है और हमारी विरासत है, एक तरह से ही ये जिंदा रहे।
0: ट्रेनिंग सेंटर कौन ले चाहिए, और ऐसा नहीं नक्काशी के काम का हो, रंग भराई का हो, मोल्डिंग का हो, हाँ दो दो मतलब वो रखनी चाहिए कि सिलाई का हो, वेल्डिंग का हो।
1: इसका जो पूरा काम है वो सारा सिखाया
0: हाँ
1: जाए उसमें।
0: जी जाने इसके उद्योग हैं,
1: जी
0: जैसे यहाँ पर पीतल का उद्योग है तो मुरादाबाद में होना चाहिए, अमरोहा में लकड़ी ढोलक का काम है तो होना चाहिए, अलीगढ़ में है जहाँ छपाई का, वहां होना चाहिए, इससे वृद्धि भी होगी।
1: तो आपकी ये जो उपलब्धि है, ये सम्मान मिला है, तो इसका श्रेय किसे किसे देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं अपने जो गुरुजी हैं हमारे जिनसे काम सीखा है, तो उनका भी मतलब मैं वो कहूंगा कि भी पता नहीं क्या भाग्य किस्मत की बात है, जो कि वहां से हमें काम सिखाया, हमें लगन से वो हमने भी रुचि से सीखा, और मुझे जो है इस काम के लगभग 55 साल का अनुभव है।
1: अच्छा,
0: हाँ बराबर काम कर रहा हूँ, बीच में बहुत अड़चन आई 1980 में जब दंगा फिसाद हुए थे, तो बड़ा मुश्किल था घर से बाहर निकलना, उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा,
1: घर वालों का क्या सहयोग रहा
0: तो
1: है?
0: ये तो मतलब हौसला बुलंद रखते थे, यार चिंता मत करो सब हो जाएगा, कैसे खाना पीना का काम चलेगा वो सब हो जाएगा, तो हमारी मिसेस ने भी जो जोड़े हुए पैसे थे वो निकाले। हाँ बुरे वक्त पे जब हम ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो काम चलता रहे, मतलब हिम्मत नहीं आ रही, हम काम छोड़ा नहीं, तो आज उसी की बदौलत है जो इस काम मतलब उन्नति पाई है हमने।
1: तो ये थे मुरादाबाद निवासी चिरंजी लाल यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी पीतल पर नक्काशी के विशिष्ट कलाकार चिरंजीलाल यादव के साथ विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे संजय तिवारी। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत फिल्म से ये गाना। आवाज़ें हैं अभिजीत और नीरजा पंडित की, शब्द रचना है गुलजार की और संगीतकार हैं जतिन ललित।

अब सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में दुश्मन फिल्म का ये गाना। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं प्रीतम सिंह।

और संगीतकार थे जतिन ललित। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुरु से। आवाजें हैं हरिहरन, अलका याग्निक, ए आर रहमान और मोहम्मद असलम की। शब्द रचना है गुलजार की और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं आपको बता दें कि आज फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम 11:25 से प्रसारित होगा। मदाजी इसकी आवाज में आनंद बख्शी के बोल हैं अनु मलिक का संगीत।

और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं हांसी के बाद फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित 11:25 से प्रसारित होगा और इसी वक्त फिल्मों के नाम हम आपको बताएंगे और उन्हीं फिल्मों से अपनी फरमाइशें आपको भेजनी है, तो 11:25 का इंतजार करें।

खलनायक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11:10 होने वाले हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: मिक्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रिजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे हैं जगमोहन शर्मा।
2: नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री जम्मू कश्मीर से समाज सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हैं ब्रिजलाल भट्ट जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपको किन किन कामों के लिए ये मिल रहा है।
3: देखिए, अभी जो आपने बताया मुबारकबाद मुझे आप दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ विवेकानंद राख मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, तो ऑब्जेक्टिव है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। ये स्पिरिचुअली ओरिएंटेड

0: सर्विस मिशन के जरिए होता है, इसलिए ये मैं समर्पित करता हूँ विवेकानंद राक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया नागडंडी के माध्यम से समाज सेवा कश्मीर में करने का। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जो हंड्रेड्स कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज में शामिल हैं। मैं खास तौर पर ये समर्पित करता हूँ कश्मीर में जो नई पौध है, हमारा जो यूथ है उनको।
1: आपके बारे में हम जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अब आप समाज सेवा के साथ जुड़े हैं। आपका ये सफर समाज सेवा के साथ जुड़ने का कब शुरू हुआ और कैसे आप प्रेरित हुए, आपका रुझान इस तरफ किस तरह से हुआ?
0: मैं गांवों की पैदावार हूँ, अनंतनाग का रहने वाला हूँ। नागडंडी अनंतनाग से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो बचपन से जुड़ा था, लेकिन सेवा में था, सेवा के सारा आयामों में, और खास तौर पर 90 में पलायन हो गया, निकल गए, तो उस टाइम मेरे दिल में ये बात आ गई कि ये जो सर्विस के बाद मैं कश्मीर में ही रहूं ताकि ऐसे कुछ कार्य करें जिससे ये विस्थापित समाज जो है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े।
1: जी,
0: तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे 850 ये जो प्रकल्प, जिसमें नागडंडी भी एक प्रकल्प है
1: जी,
0: तो सब प्रकल्प में या जितने भी 1000 केंद्र हैं सारे भारतवर्ष में, उनमें सारे एक्टिविटी चलती रहती है। संस्कार वर्ग में हो, योग वर्ग में हो, स्वाध्याय वर्ग में हो, केंद्र वर्ग में हो, ये एक्टिविटी नॉर्मल सब यूनिट्स में चलती है। लेकिन कन्याकुमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि इन एक्टिविटीज के साथ जो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे हैं, कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्टिव एडिशनली जोड़ें जिससे ये जो विस्थापित समाज है फिर से अपने जड़ों के साथ जुड़े, जिससे कश्मीर में पीस प्रमोट हो और इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन प्रमोट हो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी।
1: जी, आपने विवेकानंद की बात की, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भाईचारे का, और जैसा भारत का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब है। आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज के जरिए आप कश्मीर घाटी में प्यार का, अमन का संदेश पहुंचा रहे हैं?
0: हम विवेकानंद थॉट मिशन को लेके वहां काम करते हैं, तो नेशनल एक्टिविटीज में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है नागडंडी में, जिसमें 15-20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है।
1: जी,
0: आपको छोटा सा भारत नजर आता है वहां पर। स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होता है, वो उसमें भी बाहर के स्टेट्स का पार्टिसिपेशन और हमारे JKUT का भी पार्टिसिपेशन होता है, वो आध्यात्मिक उस रूप में करते हैं। हमारा संस्कार वर्ग में बच्चों का प्रोग्राम्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जो कश्मीर में हम करते हैं, वहां हमारे बच्चे या बच्चियां काम करते हैं, सर्विस करते हैं, हम उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं
1: जी,
0: तो उनको हम संस्कार वर्ग में उनके साथ उनको जोड़ना चाहते हैं, नागडंडी के साथ जुड़े भी हैं। अभी हमने 3 दिन का हमने संस्कार वर्ग में प्रोग्राम किया। ऐसे अब ये जो हम पीस प्रोसेस वहां करते हैं, पीस प्रोसेस जो मेरा मानना है, तब तक पीस प्रोसेस बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती जब तक सिविल सोसाइटी मीट्स ना हो।
1: जी,
0: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का इनके पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर हमने सोच रखी होती 89-90 में हमने बुजुर्गों ने अपना रोल अदा किया होता, तो ये 36 साल का पलायन नहीं हमने देखना पड़ता। तो इस वक्त जो यूथ काम कर रहा है, यूथ समझ गया है ऐसी वैसी एक्टिविटी से कुछ नहीं निकलेगा, जो कुछ निकलेगा प्यान से निकलेगा, और इसके रिजल्ट्स निकल गए। अभी मैं बता रहा हूँ अपना तजुर्बा, 2010 से मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, मेरा टीम है बहुत बड़ा, उसमें हमारी मातृशक्ति भी है, उसमें हमारी युवा शक्ति भी है, तो हमने ये देखा कि इस वक्त एक चेंज नजर आई है। हर जगह हमारा ये जो दीप जल रहे हैं, जहां जहां अंधकार है वहां रोशनी हो रही है, और इस वक्त आप नौजवान के हाथ में कलम देख रहे हैं, और रिजल्ट है हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, गांव का एक नौजवान वो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, कंपटीशन से आया है। इसी तरह कुलगाम में यंग बॉय कंपटीशन से आया है, श्रीनगर में यूथ है कंपटीशन से आया है, तो ये रियलाइजेशन आने लगी, और खास तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो समझने लगे बच्चों को हमें संस्कार वर्ग में ट्रेनिंग देनी है, पढ़ाई की ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, योग शिक्षा शिविर होते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम होते हैं, आपका ये जो बाकी प्रोग्राम यूथ मीट्स होते हैं, तो संस्कार ये नेशनल प्रोग्राम है, हर जगह होते हैं। एडिशनली जो हमने कश्मीर के लिए किया है वो ट्रेडिशनल जो हम इवेंट्स किया करते थे, जैसे रामनवमी का हवन है वहां हर साल होता है, नागपंचमी का हवन है हर साल होता है, श्रेष्ठ अष्टमी माता खीर भवानी का हर साल होता है, बल्कि 97 में एक हमने सोचा कि हम एक ऐसी जगह लें कश्मीर में, सेंट्रली लोकेटेड हो कश्मीर में, जहां हर साइड से हर डिस्ट्रिक्ट से आराम से लोग आ सके, ये प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा, उस टाइम के सिचुएशन को नहीं, आगे क्या होगा। तो हम ऐसी

0: जगह का चयन करें जो मैनेजेबल हो फेयरली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. हम ऐसी जगह लें जिस पर टोटल आस्था हो कम्युनिटी की, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी. तो खीर भवानी का चयन हो गया, वो जगह ले ली. आपको मैं बताऊं, मैं उस टाइम ब्यूरोक्रेसी में था लेकिन नागडेंडी के साथ जुड़ा था. तो दो ट्रक्स में नागडेंडी से सामान आया, 300 GI शीट्स, पोल्स लाए और लेबर 20-25 लाए. लेकिन वो जो हमारा यूथ है तो वहां शेड बनाया खीर भवानी में, ताकि उसके शेड के नीचे हम ये भंडारा सेवा शुरू करें. तो 97 में शुरू किया, 400-500 लोग थे. लेकिन चलते चलते इस साल हमारा 27वां साल था, तो 30,000-35,000 लोग वहां आए, विस्थापित लोग. उसमें हमारी बहनें, हमारे जो भाई बच्चे उसमें होते हैं, इतने ही मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी वहां होते हैं
1: जी.
0: अब इट्स नॉट ओनली दैट, मैंने देखा ये जो 97 से बचे, मैं फिर 2010 से चेयरमैन भी रहा हूं, मैं देखता रहा एवरी एनुअली ग्रेजुअल इंक्रीज
1: जी.
0: तो वहां केंद्र बना, फिर देन इट बिकेम अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इसको हम, ये जो पीस वहां खड़ा हो गया, आराम से लोग आते हैं करते हैं, ये पीस कैसे लेटरली परकुलेट हो
1: जी.
0: तो अभी आपको मैं बताऊं, और खुशी है मुझे कि ये 15-20 जगह ऐसे हवन होते हैं कश्मीर में, चाहे आप बारामूला कुपवाड़ा में देखो, शुपियन मंजगांव में देखो, आप दिवसर कुलगाम में देखो, लोगरी पोरा में देखो, अकिनगांव में देखो, लुगबोन में देखो, सारे कश्मीर में ज्येष्ठी के ऐसे हवन होते हैं. तो पीस प्रोसेस हो गई, और ये हवन भी, इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिस्टिक सपोर्ट रहता है इसमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें सपोर्ट एनकरेजमेंट होता है. तो ये चलते आ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इसका हर साल ये असर होता है.
1: अच्छा, अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो इसको भारत के सर का ताज कहा जाता है, और अपने आप में ही एक छोटा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग जबान बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं. और जम्मू कश्मीर की हम पूरी बात करें, जम्मू शहर जो बसा, यहाँ शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते देखा. कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ अरमदारे कश्मीर, जिन्हें नंद ऋषि भी कहते हैं, वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों की एक जैसी आस्था रही है. आप महाराजा हरि सिंह के समय की बात करें तो वहां एक मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू राजा और सभी खुशहाल उसमें रहते हैं, ये खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की. लेकिन बदकिस्मती से एक दौर ऐसा आया कि हम अंधेरे की तरफ चले गए, गुमराह हो गए, या जिस तरह से भी. आज आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर तेजी से खुशहाली, तरक्की, अमन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है?
0: देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने ऐसी बात छेड़ी, आपने विद रेफरेंस रिकॉर्ड, मैं प्रैक्टिकली आपसे बताता हूँ. हमारी जॉइंट फैमिली थी अनंतनाग में, 40-50 लोग इस फैमिली में थे, एक साथ रहते थे, इंटीग्रेटेड थे. तो सब बच्चों का, हमारे सारे बच्चे जो हैं ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं. तो हमारा ये था कि सवेरे उठना, 4:15 उठना, तो इंद्रनाग है वहां पर, चश्मा है, उधर नहाना, फिर केंद्र में जाना, गुरुद्वारा में जाना, वहां से प्रसाद लेना, उसके बाद हम देवी बल था उधर, प्रसाद लेना, ऋषि साहब के जियारत के पास जाना, प्रसाद लेना, वो देते थे शीरीन, वहां हम चक्कर लगा के फिर हम घर जाते थे, फिर हमें चाय मिलती थी. ऐसा मेरा ही नहीं, सब बच्चों का ऐसा होता था. यही हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनमें भी यही संस्कार थे, और इन संस्कारों की वजह से हमारा बचपन जो ऐसा है, मैं इस वक्त सोचता हूँ मेरे दोस्त उस टाइम कहाँ थे, वही मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे. जबानी याद, गुरुद्वारा एक जगह, मंदिर एक जगह, और शेर बाग नीचे, तीनों एक जगह थे, किसी ने किसी का एक इंच नहीं खाया
1: जी.
0: अब इसको तो मैं कह रहा हूँ, और बचपन में जब हम जाते थे, निकलते थे, मुझे आशीर्वाद मिलता था, जो हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी की फैमिली एल्डर्स, मेरे पिताजी के दोस्त और अपने पंडित बरादरी के जो एल्डर्स थे दोस्त, इतना हमारा भय रहता था उनका, हम गलत काम नहीं कर सकते थे. मैं मुस्लिम वाले में ही रहता था, मुसलमान का बच्चा जो मेरे से छोटा, मेरे साथ तेजी से भी नहीं बात कर सकता था. अगर मैं बोलूंगा वो हो गया, ये हो गया, तो मैं रिवर्स गियर में जा रहा हूँ. हमको आगे चलना है, हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे जो हैं एक साथ हैं. और आपको एक खास तौर पर मैं सारे नेशन को बताना चाहता हूँ, ये जो 5-6 हजार बच्चे विस्थापित समुदाय के वहां गए हैं, आई कीप टेलिंग देम, यू आर द एम्बेसडर्स, आप में हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा. दे हैव नॉट गॉन देयर टू सर्व मॉनिटरी बेन्स के, वो तो करना है, वो इसलिए गए हैं कि उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने लाया है. आई हैव इंस्टेंसेस, मोस्ट ऑफ देम, एक कुपवाड़ा बारामूला में रोहित रैना है, वो अच्छे काम कर रहा था बाहर, तनख्वाह भी अच्छी ले रहा था, मिसेस भी सर्विस कर रही थी. ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो वापस आ गए हैं, वहां अपने कुपवाड़ा में सेटल हो गए हैं, बारामूला में सेटल, ऐसे बहुत से बच्चे हमारे.

0: परिस्थितियों के बावजूद वो वहाँ काम कर रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं सारे 5-6 हजार बच्चे जिनको मैंने कहा एम्बेसडर, इतने ही नए बच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझ लिया कि ये जो कंपोजिट कल्चर है ये क्या था
1: जी,
0: कश्मीरी पंडित क्या था,
1: असली खूबसूरती वही
0: वही थी, एक गुलदस्ता था, अलग अलग फूल थे
1: जी।
0: और वही होगा जो इस वक्त का मैं देख रहा हूँ। देखिए रिटायरमेंट के बाद आई शुड ऑल्सो हैव बीन विद माय चिल्ड्रन, आई शुड हैव गॉन, इधर उधर सब जाते हैं। मुझे फख्र है कि आई एंजॉय द डिस्टिंक्शन कि मैंने फैसला किया उसके बाद नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए।
1: भट्ट साहब, आखिर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जो माहौल है खुशनुमा माहौल है, हम तेजी से अमन की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसमें हर एक इंसान का, हर एक जम्मू कश्मीर वासी का क्या फर्ज बनता है कि इस माहौल को और सपोर्ट करें और एक बार फिर जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर बन जाए जो कुछ वर्ष पहले हुआ करता था।
0: देखिए एक माहौल था कश्मीर में, बच्चा कोई गलती नहीं करता था, कहीं से भी बाहर से भी शिकायत आई या कहीं से भी आभास हो गया पिताजी को या माताजी को कि बच्चे ने ये कर दिया, उसको डांटते थे
1: जी,
0: वो समझते थे, पेरेंट्स विजिलेंट थे। लेकिन थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ये जो वॉच नहीं रहा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे को पेरेंट चाहे तो बच्चा कोई गलत काम करे, अगर करता है दैट इज द पेरेंट फेलियर।
1: जी, यही आप कहना चाहते हैं कि हर एक नागरिक को एक विजिलेंट होके काम करना है,
0: Correct.
1: एक निगरान बनना है, अपने बच्चों पे नजर रखनी है, नौजवानों पे नजर रखनी है, ताकि दोबारा से हम पटरी पर जो आ गए हैं दोबारा से हम पथ भ्रष्ट ना हो, पटरी से ना गिरे।
0: एक चीज और बताना चाहता हूँ, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड वेरी क्लियर। ये जो मैं कह रहा हूँ देखिए, इसको कैश करने की जरूरत है। हमारा जो नौजवान इस वक्त कश्मीर में है उनका जोश और पेरेंट्स का होश
1: जी,
0: जब एक यूनिसन में आएगा, कश्मीर फिर वही गोशवारा बनेगा, कश्मीर वही फिर गुलदस्ता बनेगा, कश्मीर वही फिर टॉर्च बेरर बनेगा, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर होल ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज वी बिलीव इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और मुझे उम्मीद है भारत को विश्व गुरु ले जाने के लिए हमारे कश्मीर के यूथ का, चाहे किसी भी फेथ से हो, आगे आगे हमारा यूथ होगा, ऐसा मेरा मानना
1: जी। तो भट्ट साहब, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना जम्मू कश्मीर में समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए समाज सेवी ब्रजलाल भट्ट के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे जगमोहन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपने प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11:25 और 12 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रोग्राम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है, लेकिन चूंकि आज ये कार्यक्रम 11 बजे के स्थान पर 11:25 से 12 बजे तक प्रसारित होगा, इसलिए फिल्में कम हैं। आज की फिल्में हैं गुलामी, दुश्मन, शालीमार और महबूब की मेहंदी। चार फिल्में हैं और फरमाइशें बिल्कुल सीमित संख्या में कार्यक्रम में आज शामिल हो पाएंगी, तो आपको ख्याल ये रखना है कि एक बार ही एक फिल्म के लिए संदेश भेजें और उसमें 2-3 नाम ही लिखें। एक ही स्थान के श्रोताओं के नाम लिखें। 7905519981 ये कार्यक्रम का नंबर है और ये आप जानते हैं, क्योंकि फिल्मों के नाम बताते ही आपके बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच जाते हैं। तो आज की फिल्में हैं गुलामी, दुश्मन, शालीमार और महबूब की मेहंदी। 7905519981 ये व्हाट्सएप नंबर है। एक बार ही कार्यक्रम में संदेश भेजें और एक स्थान के कुछ एक यानी 2-3 श्रोताओं के ही नाम भेजें ताकि गीत आप सुन सकें।

और बिल्कुल शुरुआत के 5-7 मिनट के अंदर नाम भेज दें ताकि आपका नाम जरूर शामिल हो जाए। गुलामी, दुश्मन, शालीमार और महबूब की मेहंदी कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं क्योंकि आपकी फरमाइशें बहुत सी आ गई हैं इस गीत के लिए। शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पहले गीत सुनते हैं फिर आपकी फरमाइशें।

गुलामी फिल्म का युगल गीत लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज़ों में था। फरमाइशें आप सबकी आई हैं व्हाट्सएप के जरिए। कोका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल और अनिल कुमार जंघेल। ये संदेश है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल और विवेक का। आप हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने और हीरामन शेंडे राहुल नगर अमरावती से। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से सुन रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज अब्बासी। सोनाली नारंग, पथिक भसीन, कृषि कुलभूषण भसीन और उनकी दादी जी हैं। और आप सबने अम्बाला कैंट से संदेश भेजा है। इमृति यादव ग्रामबर्टी सकलडीहा चंदौली से हैं। अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति और अंजलि प्रजापति की फरमाइश आई है करौता वाराणसी से। बरका खाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना और सोनू तस्नीम। इसी गीत को सुनना चाहा मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा और अनुज वर्मा ने खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। अस्तुपुरा मऊ के हमारे श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। बजौनिया जालौन से इस गीत को सुनना चाहा सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक चंसौलिया और उनके दोस्तों ने। त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी हैं गहमर गाजीपुर के श्रोता। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और यश प्रयाण बठेना पाटन दुर्ग से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। एटा रोड गंज डुंडवारा से बीपी गौतम और सरिता गौतम। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवियम जैन। मुबारकपुर ऊंची तक ही आजमगढ़ के श्रोता दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वक्कार हैदर, कनीज सकीना और हसीना दिलशाद। नासिर शेख, साजिद शाहिद और नाजिया नासिर की फरमाइश श्रीरामपुर महाराष्ट्र से।

छोटी बलिया मुंबई करजत से हैं अहमद भाई फूल वाले, दुखना सदफ और जूही इकबाल। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी और अकरम अंसारी की फरमाइश। दिग्दर्शन और कविता ने संदेश भेजा है बीकानेर राजस्थान से। हमारे श्रोता हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर, छत्रपति संभाजीनगर सूर्यवाड़ी से, और शिवाजीनगर खंडवा से हमें सुन रहे हैं राजेश सेन, सुरेखा सेन, अक्षय सेन और शुभम सेन। हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया की फरमाइश स्टेशन रोड जमशेदपुर से आई। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल साहनी, पिंकी साहनी और डॉक्टर अफजल मलिक। बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार की फरमाइश गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म दुश्मन, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

जी हाँ, और हमारे सामने हैं आपके बहुत सारे नाम जिन्होंने इस गीत के लिए फरमाइशें भेजी। फिल्म के दुश्मन किशोर कुमार की आवाज़। जमानिया गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल। बेरडी से ये फरमाइश राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोम ने की आई है। गमहरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल और मुराहू जायसवाल। साबिया खान, अनस खान, रईस खान, शकील खान हमें सुन रहे हैं अंबिवली मुंबई महाराष्ट्र से। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता गांव नारी पचदेवरा गाजीपुर के श्रोता हैं। ये फरमाइश हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा की दत्रेंगी भाटापारा से आई हुई। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ओजस्वी यादव और ज्योति यादव। मुटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला और ओम कुमार सुरलकर। इसी गीत को सुनना चाह नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और नवेद हसन अब्बासी ने मारहरा दरवाजा एटा से। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी हैं चोहलदा बागपत के श्रोता। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नाइक, हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी और ट्विंकल की फरमाइश नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से आई। आर अश्विन, शानू, शोभनाथ अवस्थी हैं चुनार मिर्जापुर से। हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता नथाना पंजाब के श्रोता। महेंद्र मोदी ठाकुर साहब रामगढ़ कैंट से हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और रयान बाबू। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। बजड़िया से हैं वाराणसी में ये है ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी और सलीम आजाद अंसारी। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा की फरमाइश मऊनाथ भंजन से आई हुई है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हमें सुन रहे हैं मोहम्मद इशाक, खतीज।

दिव्या बेगम, मोहम्मद अशफाक और आफरीन कौसर, गोविंद वैष्णव और दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका लसुड़िया पाता राजगढ़ से, दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा के श्रोता है, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे और संदीप बाठे, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, पुरानी भिलाई तीन चरौदा से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी और परिवार के सदस्य, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर राही, निखत परवीन और नुसरत परवीन, और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म है शालीमार, की आवाज लता मंगेशकर की। संगीत है राहुल देव बर्मन का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

शालीमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और इस गाने की फरमाइशें हमारे इन श्रोताओं की आई हैं।

खरगोन सनावर से इस गीत को सुनना चाहा अशोक वर्मा और अर्चना वर्मा ने। तकिया मड़िया हूं से हैं जमील अहमद शाह, अल्तमश शाह और मोहम्मद दानिश। ये फरमाइश है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह, संगीता तुषार सिंह और रिंकी शेखावत की। पटेल नगर मुगलसराय से हमारे श्रोता सुनील कुमार सिंह ने इसी गाने को सुनना चाहा। आप हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया।

भीलखेड़ी सारंगपुर राजगढ़ से संदेश आया है धनराज बैरागी सीमा बैरागी का और आप हैं फरासी हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन निशा शबिस्ता और पलक। दादरी गेट भिवानी के श्रोता हैं कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा और किरण मेहरा। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहरा जहां की फरमाइश है लक्सर हरिद्वार से आई हुई। चोचकपुर बाजार गाजीपुर के श्रोता हैं राम सकल चौधरी। बैंजो मास्टर सुनील यादव शिवकुमार यादव तनिष्का यादव और नौबत यादव हमें सुन रहे हैं मोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से। पांडु चंदन उषा चंदन और रानी चंदन की फरमाइश कुम्हार गली कोलगांव से आई हुई है। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ के श्रोता हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू। मुंदी चक भागलपुर के श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी। पोफाली यवतमाल से जयराम सिंह गढ़कर दिशांत कुमार और अर्पिता की फरमाइश अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। बनबघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक नामदेव समर्थ और शौर्य नामदेव। मुजफ्फरपुर के श्रोता हैं हमारे राजू कुमार बिट्टू कुमार अर्चना कुमारी कल्पना कुमारी मुन्नी कुमारी चांदनी और नंदिनी कुमारी। धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका और आदि।

जंघेल की फरमाइश आई। गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से हैं रमनदीप परिहार, राजदीप परिहार। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी माँ काली स्थान नौली गाजीपुर के श्रोता हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश महबूब की मेहंदी, फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

चंघेल की फरमाइश आई। गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से हैं रमनदीप परिहार, राजदीप परिहार। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी माँ काली स्थान नौली गाजीपुर के श्रोता हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, महबूब की मेहंदी, फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत रफी साहब की आवाज और फरमाइश भेजी हमारे श्रोता अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अग्रिम गौंड ने पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज दो से। और साथ ही आपने अपने संदेश में विश्व ओलंपिक दिवस मॉस्को 1980 हॉकी का फाइनल, मोहम्मद शाहिद जो बनारस के हॉकी खिलाड़ी थे उनके यादगार गोल की सभी को शुभकामनाएं भेजी हैं। धन्यवाद आपको। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की फरमाइश। शादुल शहर राजस्थान से हमें सुन रहे हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, वसीम खान हैं कस्बा कला शाहजहांपुर से। श्रवण निषाद उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं। मोहसिन अंसारी, सरताज अंसारी, सद्दाम अंसारी, शाहिद अंसारी, मुश्ताक अंसारी कुटवा वाराणसी से। कुरासी रायपुर से हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज और सुष्मिता। ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहा। तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा और चैतन्य मस्किन है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से अरविंद सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती

नाचानी और विनीत नाचानी की फरमाइश। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से हनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती से हैं प्रवीण हागोड़े, योगिता हागोड़े और कुमारी प्रियाली हागोड़े। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा की फरमाइश अनारकली बाजार जगराव से आई हुई है। इसी गाने को सुनना चाहा एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत और निखिल कांगड़ा ने। निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं चंद्रकला, देवीदास और बंडू लोहार। मुकेश शर्मा और गौरव शर्मा की फरमाइश भिलाई छत्तीसगढ़ से। बेरडी से है नानाजी लाम से, तेजस जयलाम से और हर्षिता लाम से। अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार और भानु प्रताप सिंह पवार कलमंडी खुर्द झालावाड़ से। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु और संस्कृति व्हाइटफील्ड बेंगलोर में हमें सुन रहे हैं, शुक्रिया आपका। सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु और पार्वती की फरमाइश हीरा वाली फाजिल का पंजाब से। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले और रोहिणी दले। जवाहरनगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी योगेश और संध्या कीर्ति कुमार। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना, अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे और अविका की फरमाइश कोयते बस्ती पुनावले से आई हुई है। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज और सुंदर जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति और देव कुमार जायसवाल। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु की फरमाइश पाकुड़ झारखंड से। और ये हमारे श्रोता है रोहासी छत्तीसगढ़ से, इनका संदेश मुकेश साहू, नंदिनी और मनीष साहू। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका और अनिष्का की फरमाइश डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से। अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा है खरगोन सनावत के श्रोता। राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। मुमताज अहमद, आलमगीर अंसारी, आरिफ जमाल, राशिद जमाल आप सभी हैं कोटवा गढ़ी के श्रोता। हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने फरमाइश भेजी है रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से। कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, ये मिर्जापुर में जगह है। कृष्णा धीमान और राहुल, शुभम, कोमल और परी। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरहत जहानाज हमें सुन रहे हैं नूरमहल सीतामढ़ी बिहार में। एटा रोड गंड डुडवारा से बीपी गौतम और सरिता गौतम, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और जयप्रकाश राहुल अम्बाला हरियाणा के श्रोता हैं। किशन सपकाल, सोनिया सपकाल हैं शास्त्री नगर बीड शहर से। हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी और मनोहर भाई बागरी हैं सुदामानगर रतलाई झालावाड़ राजस्थान से। कुर्मा जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से दिलदार मीरी, ज्योति और जानवी। जमालपुर गोगरी खगड़िया से हैं सिकंदर कुमार, गुडलक कुमार। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर और सरला मनवर। मोहम्मद सादिक और मुश्ताक अहमद हैं सनावत के श्रोता। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा पलारी से। हांडीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। वीरेंद्र बिहाण और सुरेंद्र बिहाण हैं जेवर हिसार से। फणेश कुमार चंदन और सावित्री देवी चंदन मगर लोड छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा पीपर लोड सरगांव से। सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबैर अली खां, सबीहा जुबैर, सैयद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया की फरमाइश सहारनपुर से आई हुई है। बड़ा बम चौक खंडवा से हैं ममता और संजय। साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति खमरिया से। समर्थ दादा देठे पाटिल बुढ़ाना महाराष्ट्र के श्रोता हैं। कमला रानी, गीतिका भानु हैं उत्तम नगर दिल्ली से। ये फरमाइश है फाजिल्का पंजाब से भूषण खेरा और विशु खेड़ा की। भास्कर दुबे चोचकपुर गाजीपुर के श्रोता। डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया पटेल नगर मलौत से। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा टैगोर गार्डन के श्रोता हैं। तो श्रोताओं ये था आज का प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित। आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपको बता दें कि कल सुबह 10:10 से 11 बजे के बीच आप कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश के लिए फोन कर सकते हैं। आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। ये था कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के

ने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के

0: था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल कर चल, अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे, अरे चल ना जल्दी कर।

0: ये तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही

0: पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
0: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
1: मेरे पास?
0: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
1: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ
2: और क्या?
1: है।
0: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
2: घटेगा।
1: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है? हम अकेले क्या कर सके हैं?
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
1: चलो, इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो चलो चलो
3: चलो,
2: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था,

0: बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है सुगम संगीत कार्यक्रम का।

0: समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है सुगम संगीत कार्यक्रम का।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं प्रियंका सहवाल की गाई भक्ति रचनाएं। पहले सुनिए गुरु नानक देव की रचना।

संत कबीरदास की रचना अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी प्रियंका सहवाल। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 12:45 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है रामजी मिश्र का एकल तबला वादन, एक ताल में। सारंगी पर लहरा दिया है जक्कन खान ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रामजी मिश्र का एकल तबला वादन एक ताल में, सारंगी पर लहरा दिया जक्कन खान ने। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है अब समाचार, दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता, सुगमता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म

0: पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रद्युम्न प्रजापति, पिता का नाम सुरेश प्रजापति, ये हरपालपुर रोहता वाराणसी के निवासी हैं और 30 अप्रैल 2026 से लापता हैं। प्रद्युम्न प्रजापति की आयु है 25 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था काले रंग की पैंट और काले रंग की शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब वाराणसी से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार रत्ना यादव, पति का नाम मनशा यादव, ये लश्करिया राजा तालाब वाराणसी की निवासी हैं और 4 अगस्त 2022 से लापता हैं। रत्ना यादव की आयु 24 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। आखिरी बार इन्हें जब देखा गया तो इनका पहनावा था गुलाबी रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब वाराणसी को सूचना दें। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से ही प्राप्त एक और सूचना, इसके अनुसार पूनम, पति का नाम ब्रिजेश कुमार, ये टकटकपुर सरसौली कैंट वाराणसी की निवासी हैं और 28 अप्रैल 2026 की शाम 3 बजे से अपने घर से लापता हैं। पूनम की आयु 42 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था छींटदार मैक्सी और इनके बारे में कोई जानकारी अगर आपको मिलती है तो थानाध्यक्ष थाना कैंट वाराणसी को या कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी को सूचना दें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10 बजे खेल दर्पण का

कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले होगा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथियों का शहनाई वादन आप सुन सकते हैं। अंजुमन कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गज़लें होंगी रात में 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे अशोक खोसला की गाई गज़लें सुनवाई जाएंगी। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर अरहर की खेती की उन्नत तकनीक विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर सुरेश कुमार कन्नौजिया। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे हेमंत कुमार श्रीवास्तव। इनके गाए कुछ लोकगीत आप 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात। यूथ डायरी में आज के शब्द इतिहास में आज का दिन, रोजगार, सूचना और फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे कुमाऊनी गीत सुनवाए जाएंगे, कलाकार विमला बोरा और साथी। सुहाने तराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर, प्रस्तुति स्तुति मिश्रा की होगी। अंगनैया कार्यक्रम में 1:15 पर चर्चा और गीत संगीत के अलावा आज सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अंगनैया। इसमें आज का विषय है बदलती जीवन शैली और रसायन चिकित्सा की आवश्यकता। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर शिखा सिंह। आप कार्यक्रम के दौरान फोन कर सकते हैं 0542-222-1052 नंबर पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर एक कसीरुल मंजिल इमारत में एक कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 तुलबा की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए केजीएमयू ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। हादसे की इतला मिलते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा छोड़कर सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने जाय वकू का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बाद अजा उन्होंने जख्मियों से मुलाकात के लिए केजीएमयू का दौरा भी किया। वजीर आला ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को पूरे वाकये की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। जाय वकू का मुआयना करने के बाद उन्होंने जख्मियों से मिलने और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए केजीएमयू का दौरा किया। वजीर दिफा ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकात की जाएगी। दरियसना वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर हुकूमत ने वाकये की जांच के लिए 2 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। लखनऊ आतिशजदगी के वाकये में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार किया गया। हमारे नामा निगार ने बताया,
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस फायर ब्रिगेड पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, SP सरबरा अखिलेश यादव, BSP सरबरा मायावती और कई दीगर वुजरा ने लखनऊ आतिशजदगी के वाकये को अलमनाक करार दिया है और खानदानों से दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन को कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये और जख्मियों को 50-50 हजार रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है।

0: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने भी मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे शहरी सरमायाकारी तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। हमारे नामानिगार की इत्तला है कि कुल 65 अवार्ड आज पेश किए जाएंगे, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 शख्सियत समेत 56 पद्मश्री शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: भारतीय जनसंघ के बानी सदर और अजीम माहिर तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम शहादत के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, आबी बिजली के वजीर स्वतंत्र देव सिंह और दीगर मौजजीन ने उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके की मुनासिबत से उत्तर प्रदेश के महकमे जंगलात ने बड़े पैमाने पर रियासत भर में दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की है। एक पेड़ माँ के नाम के उनवान से इस मुहिम का मकसद माहौलियात के तहफ्फुज़ और रियासत को सरसब्ज बनाने के बारे में बेदारी पैदा करना है। आज रियासत के तमाम 75 अज़ला में दरख्त लगाए जा रहे हैं। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए अहल दिलचस्पी रखने वाले आजमीन से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। इस हवाले से जारी करदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 जून 2026 से शुरू होंगी और 20 जुलाई 2026 तक रात 11:59 तक जारी रहेंगी। ख्वाहिशमंद आजमीन हज कमेटी की सरकारी वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शनावास सी की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि हज नशिस्तों की मनसूखी पर भारी जुर्माना होगा, इसलिए आजमीन को मुकम्मल तैयारी और पुख्ता आजम के बाद ही दरख्वास्त देना चाहिए। और रियासत में गर्मी की लहर जारी है। दरियसना कल दोपहर गरज चमक के साथ होने वाली हल्की बारिश ने मशरकी उत्तर प्रदेश के कई जिला बशमूल, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती के रिहायशियों को कुछ राहत पहुंचाई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम महकमा मौसमियात ने दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली की पेशगोई नहीं की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। संदेश के बाद ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अग्नैया।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
5: 0542227658।
6: 0542227658।
3: लो अभी फोन लगाता हूँ।
6: 0542227658।
7: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: वाले सब बहनी लोगन के नमस्ते और इमरती बहन तोहरों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो लाली, नमस्ते। और कहें लाली
0: हाँ हो।
1: कि देखा इस समय मौसम इतना तपन बढ़ल बा ना, लेकिन जब तू अलू है ना, देख रही है कि भाई पानी ले ले, थर्मस ले ले, खाना पीना ले ले, तो हमें तो देख के बड़ा सुकून मिलल है कि लाली आ गई बानी।
0: और आज तावल औरो जरूरी रहला, कहे कि आज देखा आज के कार्यक्रम में हेलो अंगनैया कार्यक्रम होई, माने बहनी लोगन के फोन का उत्तर देवे बदे हम लोगन अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ बहनी के भी बुलाए बुलौले ही। आ देखा विषय का हो आज का, ई बता दा।
1: अरे विषय ये हो कि बदलती जीवन शैली और रसायन चिकित्सा की आवश्यकता आज काहे सबके पह। और एक पे बहन जोन हो डॉक्टर शिखा सिंह जी आयल हैं, और बहन लोगन के हर प्रश्न के उत्तर दई हैं। और बहन लोग अपन जल्दी फोन करी हैं तो अपने हर प्रश्न के उत्तर पाए जी हैं।
0: अच्छा, बहनी का स्वागत करे से पहले ई बात कह लिहल जाए कि आज देखा अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस। हाँ, और आज के दिन के मनावल जाता पूरे विश्व में। हाँ,
1: बिल्कुल।
0: वो काहे मनावल जाता?
1: अरे कहीं लाली कि भाई तू ऐसे ऐसे बात पूछ ले लू, कहीं कि कोनो भी दिवस मनावल जाला ओकर एक उद्देश्य होला। उद्देश्य करी हो कि भाई जोन विधवा बहन लोग हैं उनके, चाहे अपन राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबकी जोन हो कि जोन सुविधा हो, जैसे हो ना कि देखा विधवा पेंशन योजना हो, है आवास का व्यवस्था हो, और भी जो तरह तरह की सुविधा हो इनके भी, जैसे आम नागरिक मिलत हो इनके भी देवल जाए।
0: बिल्कुल, ई जानकारी देलू। एकरे बदे तोहके भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि तू जानकारी देलू बहनी लोगन के। अब डॉक्टर बहनी का स्वागत कइल जाए कि आज ई जानकारी दी है बदलती जीवन शैली पर रासायन चिकित्सा का आवश्यकता काहे पड़ा था, ये विषय पर जानकारी दी बदे हम लोगन अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर देले ही डॉक्टर शिखा सिंह जी के। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और स्वागत करने के लिए।
0: बहनी लोगन का फोन आवे ऐसे पहले आपसे बात हम करल चाहब। ए बहनी, बात करे से पहले यहाँ का नंबर वा बताए दा।
1: देखा हो यहाँ का जोन फोन नंबर का कोड हुआ हो 0542, और जोन फोन नंबर हो वो हो 2221052।
0: माने 222-10-52 और कोड यहाँ का लगावे के हुई 0542। अच्छा, जब तक फोने का इंतजार करत है ना, डॉक्टर बहनी से पूछ लेवल जाए कि डॉक्टर बहनी आप ई बताएं कि ई रसायन चिकित्सा हो का?
2: आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन पद्धति है चिकित्सा की हमारे भारत की, और आयुर्वेद स्वास्थ्य की रक्षा करता है।
0: जी,
2: हमारी जो स्वास्थ्य है उसको वैसा ही रखता है, बीमार नहीं होने देता। तो और इसी का एक पहलू है रसायन चिकित्सा।
0: अच्छा।
2: रसायन चिकित्सा हम तीन तरह से कर सकते हैं, आहार चिकित्सा, आचार चिकित्सा और औसत चिकित्सा।
0: अच्छा।
2: तो आहार चिकित्सा जो हम खान पान का ध्यान रख के कर सकते हैं, हरी सब्जियां खाएं, समय पे खाएं, देर रात में ना खाएं, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइम पे खाएं, ये है आहार रसायन। दूसरा है आचार रसायन। आचार रसायन सुबह जल्दी उठें, नियमित व्यायाम करें, अच्छा सोचें, तनाव कम लें, ये सब आचार रसायन में आता है। उसके बाद औसत रसायन। अगर इन सब करने के बाद भी अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो हमें औषध की चिकित्सा चाहिए, कोई दवाई चाहिए, वो औषध रसायन है। जैसे हम औषध रसायन में आंवला, आंवला एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको संपूर्ण रसायन कहा गया है। हम डेली एक आंवला लेके स्वस्थ रह सकते हैं। और ऐसे गुड़ुची है, हल्दी है, घी है, दूध है, ये सब औषध रसायन में आते हैं।
0: अच्छा, तो ये बताएं जैसे नियमित दिनचर्या तो आदमी करेला, जैसे आप जौन भी बतौली ना, आहार खाए पिए का बात है, चाहे उठे का बात है, सूते का बात है, तो इक्वल तो दिनचर्या में शामिल होला तो चिकित्सा का नाम कहे दिया गया।
2: ये दिनचर्या में शामिल है, लेकिन इसे चिकित्सा का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इससे स्वस्थ रहते हैं, और जिससे भी हमारी हेल्थ सही रहे, हमारा स्वास्थ्य सही रहे, वो सब चिकित्सा है। ये नहीं है कि सिर्फ दवाओं का खाना चिकित्सा नहीं कहा जाता है। वो तो हम जब बीमार हो गए तब दवा खाएंगे, लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए भी कुछ चिकित्सा चाहिए, वो रसायन चिकित्सा है।
0: बात आपकी बहुत अच्छी लगा था और समझ में भी आवा था कि होला का ना कि जब आजकल के समय में मने देर से उठा था, देर से सूता था, तो सोए उठे का चाहे खाए पिए का जो अनियमितता है यही से बीमारी होता है ना।
2: हाँ, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे थकान, कमजोरी, खून की कमी होना, मासिक धर्म में अनियमितता, मोटापा, बांझपन, जोड़ों में दर्द, स्मरण शक्ति में कमी, अब हमें याद नहीं रहता, ये सारी बीमारियां इससे होती हैं, हमारी जो जीवन शैली बदल गई है इससे ये

0: सारी बीमारियां होती हैं।
1: अच्छा, आपके पास तो बहुत तरह के मरीज आवत हुई हैं, हाँ, तो कौन कौन तरह का समस्या लेके आवेलन और आप कैसे उनके चिकित्सा का रास्ता बतावेली?
0: हमारे पास बहुत तरह के मरीज आते हैं, जैसे खून की कमी के भी आते हैं, कुछ तनाव से युक्त आते हैं, माहवारी में बहुत सारी दिक्कत होती हैं, बच्चेदानी में कोई दिक्कत होती है, या कमजोरी जिसको हमेशा लगी रहती है, या जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, ये सब आते हैं मरीज।
1: अच्छा इमृति बहन, तू का
2: हाँ,
1: कहे चाहत हो?
2: अरे हम कहा चाहत है कि शिखा सिंह बहन जी आयल हैं और कहें कि भैया बहनी लोग जे भी हम लोग का कार्यक्रम सुनत हुआ है भाई, उनके अगर कोनो प्रश्न पूछे के हो तो वो तुरंत अपन फोन उठावें और हम लोग के फोन करें और अपने प्रश्न का उत्तर पावें।
1: मैंने यहाँ का फोन नंबर फिर से बता दी हल जाए, जैसे उन लोगन अगर इंतजार हम लोगन करा थी तो लोगन फोन कर सके।
2: हाँ, तो कहीं कि 0542-22-21-05-2 पे तुरंत फोन उठावे और अपने प्रश्न का उत्तर तुरंत पावे।
1: हाँ, और आज का जो विषय है ना इमृति बहन, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे डॉक्टर साहिबा बतावत है ना कि खाली अपने खान पान में बदलाव करके, सुधार करके, का खाए के है, कैसे रहे के है, नियमित आचरण और व्यवहार करके हम ये तरह की चिकित्सा से अपने जीवन के कैसे स्वस्थ रख सके।
2: देखा लाली, एक बात हम वो कह चाहते
1: हाँ
2: कहा कि ई हो कि जैसे तू कह तू ना कि अपने खान पान से, और डॉक्टर बहन भी बात बतौनी है, लेकिन लोग कह रहे ना कि भाई खाए पिए के कोनो, देखा बहन लोग हैं तो उनका कोनो नियम संयम ना रहला भाई, खास करके जो गांव में बहन लोग हैं काम धाम करते हैं, खेती किया जाते हैं, तो वो कोनो समय भी कुछ भी खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि जो खान पान का आप बात कहनी है, जो बहन लोग काम करते हैं, बाहर जाते हैं, घर में काम करे थे, उनका दिनचर्या मैंने का ऐसा खाए पिए कि जो कि उनके पूरे शरीर के पौष्टिक भोजन मिले और जैसे वो काम काज में और जो सक्रिय रह सके।
0: मेनली वो घर का बनाया हुआ सब खा सकती हैं, बाहर का पैकेट बंद खाना अपने साथ ना लेके जाएं, घर का बना हुआ खाना लेके जाएं, जो बाहर काम करती हैं वो भी अपने साथ टिफिन रखें, उसमें हरी सब्जियां, रोटी, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें नियमित रूप से खाएं, और घर में जाके दूध, दही, घी, शहद, ये सब चीज़ें ले सकती हैं, डेली आंवले का सेवन कर सकती हैं, तो इस चीज़ से अपना स्वास्थ्य सही रहेगा, और नियमित रूप से पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।
1: महिला लोगन बदे रासायन चिकित्सा काहे जरूरी है, ये विषय पर भी तनी रोशनी डाली तो बड़ा निक लगी।
0: महिलाओं के जीवन में बहुत सारे चरण आते हैं अलग अलग, जैसे किशोरावस्था है जब वो छोटे होते हैं, उसके बाद विवाह हो जाता है, फिर गर्भावस्था आती है, फिर प्रसव होता है उसकी अवस्था है, फिर स्तनपान की है, बच्चे को दूध पिलाना, उसके बाद जब महावारी चली जाती है तब, ये सारी अलग अलग चरण हैं और अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह का खान पान चाहिए होता है। जैसे किशोरावस्था में ज़्यादा प्रोटीन युक्त चाहिए जिससे उनकी बढ़वार अच्छी हो, विवाह के टाइम उनका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, जब गर्भावस्था आएगी तो प्रोटीन, दूध, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, जिससे उनका शरीर अच्छे से बढ़े और बच्चे का विकास भी हो। उसके बाद प्रसव अवस्था जिससे खून बढ़े, क्योंकि खून बहुत जाता है, बच्चे को दूध की भी ज़रूरत होती है, तो दूध पीना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ऐसे ही स्तनपान में है। और रजोनिवृत्ति के बाद कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो जो कैल्शियम युक्त आहार विहार है इन सब का सेवन करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा था आपसे बतियावत के। अच्छा ये बताइए ना, जैसे प्राकृतिक रसायन का अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रसायन में कौन कौन चीज के शामिल कही जा सकेला?
0: जो हमारे घर और रसोई के पदार्थ हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सब प्राकृतिक रसायन होता है, जैसे आंवला है, तुलसी है, गिलोय है, दूध है, शहद है, मुनक्का, खजूर, गुड़, हरी सब्जियां, और जो भी मौसम के फल हैं, जिस मौसम में जो फल आता है वो उस समय का रसायन है, तो ये सब प्राकृतिक रसायन।
1: अगर जिसे खाए पिए में इच सब चीज के शामिल करे तो मन ही पूरी तरह से स्वस्थ रहेला कि ओकरे बाद भी अलग से कुछ करे के होला?
0: अगर हम ये सब चीज़ें अपनी दिनचर्या, आहार विहार सब सही रखेंगे तो ज़्यादातर स्वस्थ रहते हैं, और बीमारियां ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, तो हम उस चीज़ से जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं कम दवाओं के साथ, और हमारी त्वचा और जो बाल हैं उस पर चमक रहेगी, हमारी जो बुढ़ापा है उसकी एजिंग प्रोसेस है वो कम धीरे धीरे होगी, तो ये इस चीज़ के लिए ये फ़ायदा करता है।
1: अच्छा, तो बहने लोगन का करें, एक रे खैले के साथ साथ और का करें?
0: एक तो जो मैंने बोला आचार रसायन, उसमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हल्का व्यायाम, डेली व्यायाम जरूर करना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घर का काम कर लिया तो हमारा शारीरिक श्रम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यायाम एक अलग तरीके से होता है।

0: उस पे सांस में कंट्रोल भी करते हैं हम, जैसे अनुलोम विलोम है, तो हमें योग भी करना चाहिए, समय पर भोजन लेना चाहिए। ये नहीं कि हम नाश्ता दोपहर के 11-12 बजे ले रहे हैं, हमें सुबह के 8 बजे तक नाश्ता कर लेना है, 12-1 बजे तक दोपहर का खाना खा लेना है, रात का खाना 7 बजे तक खा लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक। ये नहीं कि आप देर तक उठें, 11-12 बजे खाना खा रहे हैं, ये सब नुकसानदायक होता है। नींद पूरी मात्रा में लेनी चाहिए, ये नहीं है कि हम टीवी मोबाइल देख रहे हैं 11-12 बजे तक, उसके बाद हम सो रहे हैं, सुबह 5 बजे फिर उठ रहे हैं, तो नींद पूरी नहीं होगी। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो और भी बीमारियां होती हैं। तनाव कम लेना चाहिए, तनाव से कोई समस्या तो दूर होती नहीं है।
1: के फोन आ गए ना।
2: हाँ लाली बहन, कहीं की दिखा के फोन आ लो, डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछा चाहत हूँ।
1: हेलो।
3: हाँ मैडम, हम
1: आवाज आपके साफ नहीं आवत भैया, तनी जन फिर से बोली बताई। हेलो,
2: अच्छा बनारस से बोलते हो भैया?
3: हम जौनपुर,
2: कहाँ से? जौनपुर से। हेलो
3: जी, बाहर
2: आ अब अजिया था कटत भैया, साफ ना आवत हुए, फिर से बोला।
3: हम हर
1: अच्छा, अपन प्रश्न बताई, अपन प्रश्न पूछी।
3: हमें 4 साल की ना, चिड़चिड़ापन होता है खान पान में।
1: 4 साल का बच्ची हो के चिड़चिड़ापन बहुत होता।
3: हाँ हाँ
1: बताएं डॉक्टर साहब।
0: हाँ, 4 साल की बच्ची में चिड़चिड़ापन होने का जो प्रमुख कारण है, या तो उस पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता है, वो अपनी जिद मनवाने के लिए चिड़चिड़ापन हो सकता है, या हो सकता है उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो, खून की कमी हो, तो आप उसकी जांच कराएं, एक बार बच्चों के डॉक्टर को उसको दिखा दें तो यही सबसे अच्छा है। और उसके खाने पीने का ध्यान रखें, उसके साथ कोई टाइम बिताने वाला होना चाहिए जो उसके साथ टाइम बिताए, उसकी बात को सुने, हो सकता है उसे कोई परेशानी हो तो उसकी बातों को अच्छे से सुनिए, उसके खान पान का ध्यान रखिए, चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम हो जाएगा, उससे बातें करने की कोशिश करें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया फोन करे बदे। अच्छा, हम लोगन बात करत रही है डॉक्टर साहिबा की नींद के बारे में ना, आप कहत रही ना कि पर्याप्त नींद लें भाई, रात के देरी तक मोबाइल न देखें और समय पर सो जाए जिसे समय पर सवेरे उठ सके। हाँ, एकरे अलावा और कौन कौन चीज जरूरी है?
0: हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, जैसे हम जैसे कहा गया है चिंता चिंता के समान होती है।
2: देखा एक फोन और आ गया भैया, कहाँ से बोला थे ना आप?
1: हेलो
2: हेलो,
4: हम लालगंज आजमगढ़ से बोल रहे हैं।
2: आजमगढ़ से बोले थे?
4: हाँ।
2: का नाम हुआ आपके?
4: उषा मौर्य।
2: हाँ, तो अपन प्रश्न पूछी डॉक्टर साहब से।
1: उषा मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है अंगनैया कार्यक्रम में, डॉक्टर साहिबा है इन लाइन पर, आप अपन प्रश्न पूछ लें।
4: हमारे हाथ और कोर में बहुत दर्द हो रहा है, कैसे ठीक होगा?
0: आपकी उम्र कितनी है?
4: 35 साल।
0: आपके हाथ और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसके लिए हो सकता है कि आप एक तो पर्याप्त मात्रा में पानी न ले रहे हों, या फिर हो सकता है आप में पोषण की कमी हो, और कैल्शियम की कमी से भी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हाथ पैरों में और जोड़ों में बहुत दर्द होता है, तो इसके लिए आप इसकी जाँच करा सकती हैं, कैल्शियम का, विटामिन डी का और आयरन, खून की जाँच करा सकती हैं। और उसकी
4: हम तो अभी जांच करा कर आए हैं, तो बोले सही है
0: सर। अच्छा, सही है, फिर भी आपके हाथ पैरों में दर्द होता है बहुत ज्यादा। क्या आपने विटामिन डी और विटामिन B12 की जांच कराई है?
4: नहीं, वो तो नहीं कराया।
0: हाँ, तो प्लीज आप ये जांच करा लीजिए एक बार, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 की, अगर और इसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर को, आसपास डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या BHU में भी आ सकते हैं आप।
4: नहीं तो हम तो विकलांग है ना, अच्छा। इसलिए नहीं कहीं जा पाते हैं, थेगुना से चलते हैं, थेगुना में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
0: अच्छा, तो आप एक बार जांच करा लीजिए, उसके बाद आसपास के किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए।
4: हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाए आज।
1: अच्छा, नहीं तो आप जो मैडम बोल रही है ना कि विटामिन डी 3 और B12 का जांच करा लीजिए, जब ये जांच कराएंगी ना, तो फिर ये जांच करा के जब डॉक्टर को दिखाएंगी तो आपको उसी हिसाब से दवा लिख देंगे, ठीक है? धन्यवाद बहनी।
2: दली कहीं ना कि देखा हो डॉक्टर साहिबा के पास फोन भी आता हो, प्रश्न भी आता हो, लेकिन जिन्होंने अभी तो बात करते उन्होंने अपने दिनचर्या खान पान का कहीं की, फिर लाली एक फोन आ गई हुआ।
1: हाँ
2: हाँ भैया बोली कहा।

0: से आप बोला
1: हेलो
0: थे। हेलो,
1: लाली जी नमस्ते। लाली जी नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते भैया, कौन बोला
1: अरे
0: थी?
1: लाली जी, अच्छा ठीक हो आप तो, बड़े मौके से बात करनी है।
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: देखा हमारे डायबिटीज है एक बड़ी।
0: भैया, बोलत कहाँ से? पर नाम बता दी।
1: हम रमा शंकर गुप्ता बोलत लिया जौनपुर बगही से।
0: अच्छा, रमा शंकर गुप्ता भैया, अंगनैया कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, अपन बात बताइए।
1: हाँ, हमें भी बड़ी खुशी है कि निःशुल्क हमें निःशुल्क राय मिल जाला, बिना डॉक्टर के यहाँ पहुंचे ले, तो बहुत खुशी मिल जाले। हाँ
0: प्रश्न
1: देखा,
0: का
1: हम
0: है आज का
1: डायबिटीज
0: आपका?
1: में फल हल, डायबिटीज में हम कुछ दवाई अंग्रेजी ना खेली, परहेज और नियम से रहली,
0: हाँ
1: फिर भी रिपोर्ट सही आवाला, तो का करे उके, फिर हम रिपोर्ट निकाल लें कि राय दिखा दी।
0: हाँ तो डॉक्टर बहनी बताई हैं,
2: अगर आपकी रिपोर्ट परहेज करने से सही आ रही है, तो आप लेकिन हर 3 महीने पे या 6 महीने पे अपनी शुगर की जांच कराते रहें। अगर
1: हाँ
2: आपके
1: तो
2: परहेज
1: शुगर की जांच कराएगा तो रिपोर्ट सही आवाला।
2: हाँ तो आप बस वो परहेज करते रहें तो आप सही रहेगा, उसके लिए दवा की जरूरत नहीं
1: अच्छा
2: पड़ेगी आपको। लेकिन
1: नहीं, तो अंग्रेजी दवा तो छुए भी नहीं हमने तो।
2: हाँ तो बस ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे
1: हाँ
2: ही अपना अपनी दिनचर्या सही रखेंगे
1: बिल्कुल
2: तो
1: बिल्कुल,
2: आपको
1: उसी को
2: किसी
1: तो।
2: दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: हाँ क्योंकि बैठे बैठे हमेशा नहीं पढ़े रहता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ आपके आकाशवाणी से भी, पुस्तकों से, तो उसमें हमने एक कमी पाया कि जो भरपेट भोजन खाकर सो जाते हैं तो उसको बंद
2: हाँ
1: कर दिए।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाना खाने के बाद
1: अच्छा
2: 15 मिनट जरूर टहलना चाहिए।
1: अच्छा भरपेट भोजन करके उसमें भोजन में क्या बचाव करना चाहिए वो तो हम कर ही रहे हैं,
2: हाँ जी
1: और सुबह सुबह हम आंवला के चूर्ण जरूर ले लिया पढ़ो महीना।
2: हाँ, ये भी अच्छी बात है आपके लिए।
1: हाँ तो रिपोर्ट में कहा ना डॉक्टर साहब मुंबई बतौने तो, हाँ ठीक है दवाई मत खाया ना खेले, बस बिल्कुल छुए मत दवाई का,
0: रमा
1: अंग्रेजी का
0: शंकर
1: ये
0: भाई,
1: क्यों
0: जो
1: बंद
0: रहा
1: नहीं
0: कि
1: लग
0: बहुत
1: रहा।
0: परहेज करा तुम्हें, बढ़िया से रहा तुम्हें, ईश्वर करे कि आप ऐसे ही रहे। अब भैया
1: अच्छा
0: धन्यवाद
1: आज
0: आपके
1: भी
0: फोन
1: 20-25
0: कर बताए।
1: किलोमीटर साइकिल से आना जाना रोज होला।
0: हम्म, इसीलिए आप इतने स्वस्थ हैं।
1: जी हाँ, ये लोग
0: ठीक,
1: कहते हैं कि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, 64 साल उम्र में आप जो साइकिल चलाते हैं इसका बहुत बड़ा नतीजा आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें सब लोगों को ध्यान देनी चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया कार्यक्रम में फोन करे बदे। हम लोगन बतियावा थे और खुशी होता कि श्रोता भैया बहनी लोगन का फोन हम लोगन के कार्यक्रम में लगातार आवा था। हम लोगन बात करत रही है डॉक्टर बहनी की तनाव के कम करे का आप बात करत रही
2: हाँ,
0: जी।
2: तनाव जैसे सब जानते भी हैं कि चिंता चिता के समान होती है, और चिंता करने से कोई समाधान भी नहीं निकलता है। तो जो भी समस्या है उसके बारे में सोचना चाहिए, पर तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तनाव लेने से हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, जिससे और भी बीमारियां होती हैं। और नशे से दूर रहना चाहिए, जैसे तम्बाकू है, शराब है, गुटखा है, पान है, इन सब नशों से दूर रहना चाहिए। चाय और कॉफ़ी की भी लत जो हो जाती है, नशा उसका भी, कि 5-6 बार चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, ये भी बुरा है। तो इन सब से दूर रहना चाहिए, और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अगर स्वच्छता हम नहीं रखेंगे तो त्वचा रोग हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, दाने हो सकते हैं त्वचा पे, ये सब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना
0: बिल्कुल
2: चाहिए।
0: सही बात कहथिन। अगर हर तरह का परहेज और उपाय करके का करब कि अगर साफ सफाई न रही तो हर तरह का बीमारी अपने लग गए आ जाए। हाँ
2: हाँ जी
0: अच्छा, जब बात कर रहे थे हम लोगन आहार विहार पर और महिला लोगन के नियमित दिनचर्या पर, तो गर्भवती महिला लोगन बदे भी कुछ उपाय है कि उन लोगन कैसे रहें, उनका आहार विहार का हो के।
3: हेलो हेलो
0: फोन आ गई। अच्छा
3: हेलो हेलो,
0: हाँ चलिए, देखा तो फोन कट गए।
3: हाँ
0: हाँ
3: हेलो हेलो, हाँ
0: मोबाइल के अपने रेडियो फोन सेट से दूर रखी बहनी भैया, जे भी फोन करा था जैसे हम लोगन से संपर्क
3: संपर्क हो
0: हो
3: सके।
0: सके।
3: हाँ हेलो
0: फोन कट गई है। हम लोगन गर्भवती महिला लोगन बदे बात करत रही हम।
2: हाँ जी, गर्भवती महिलाओं में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना
0: फोन आ गई
2: चाहिए।
0: मैडम।
3: हाँ हेलो हेलो हेलो,
0: हाँ बार बार कट जाता। हम लोगन अपने विषय पर आई, गर्भवती महिला बदे बात करत रही है हम लोगन।
2: गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, दूध, फल, सब्जियां और घर का बना खाना, ये सारी चीजें खानी चाहिए। और आयुर्वेद में एक गर्भिणी परिचर्या बोला है कि किस तरह से रहना चाहिए, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए, और क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे पपीता है,
0: एक फोन आवत
2: अनानास
0: है
2: है।
0: मैडम।
3: हाँ हेलो,
1: हेलो,
3: हाँ भैया, आप अपने कार्यक्रम अंगनैया में स्वागत करती हैं। अपन नाम बताइए और कहाँ से आप बोल रही हैं।
1: हम जौनपुर जिला से, हम नारायण बोल रहे।
3: हाँ भैया, आप डॉक्टर साहब लाइन पे हैं, आप अपने प्रश्न पूछें।
1: हम ये पूछे चल जा रहा कि हमारे बच्ची है उसको पानी की शिकायत हो।
3: तो शिकायत भैया,
0: पानी की शिकायत हो तो
3: अच्छा
0: ल्यूकोरिया टाइप से।
3: का उम्र

0: बच्ची का है?
1: 24 साल।
0: अच्छा,
2: 24 साल की बच्ची है जिसको ल्यूकोरिया है, आप यही कह रहे हैं ना?
1: हाँ
2: हाँ, तो ल्यूकोरिया का जो कारण होता है, ल्यूकोरिया का कारण होता है या तो साफ सफाई ना रखी जाए, ठीक है, और
1: अच्छा
2: एक कुछ टाइम के लिए, जैसे महीने के महीने आने से पहले, महीना आने के बाद 1-2 दिन, और महीने के 10वें 12वें दिन थोड़ा बहुत सफ़ेद पानी जाना नॉर्मल है। अगर उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है तो वो नॉर्मल होता है, पर अगर उसमें दुर्गंध आ रही है या फिर और बहुत ज़्यादा जा रहा है तो वो कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है बच्ची बहुत कमज़ोर हो, इसलिए भी जाता है सफ़ेद पानी। तो पहले तो उसके आहार विहार का आप ध्यान रखें, उसको उचित पोषण दें, जो प्रोटीन है। अगर वो नॉनवेज भी खाती है तो अंडा खा सकती है, ऐसा नहीं है कि उसको दूध नहीं, और उसको दूध दे सकते हैं, प्रोटीन दाल दीजिए। और अगर फिर भी उसमें बदबू आती है या बहुत ज़्यादा जाता है तो आप एक बार दिखा दीजिए किसी स्त्री रोग वाले को, विशेषज्ञ को, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो देख के बता सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है।
1: कहाँ दिखाओ के जांच करावल लाल के मतलब जैसे अल्ट्रासाउंड उन करावल लाल है तो दवाई दे रहा है लेकिन मौका ना आ लाल
3: तो
1: जैसे
3: अल्ट्रासाउंड में कोनो
2: अल्ट्रासाउंड
3: तरह
2: आप
3: का
2: दिखा
3: संक्रमण नहीं ना निकलल हो?
1: कहा सर
2: अल्ट्रासाउंड में कोई संक्रमण तो नहीं दिखाया है? अल्ट्रासाउंड की
1: नहीं,
2: रिपोर्ट,
1: कोई संक्रमण तो
2: हाँ,
1: ना दिखाओ था
2: तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट एक बार आपको दिखानी पड़ेगी, उसी के हिसाब से कोई भी दवा बता सकता है, अगर अल्ट्रासाउंड में जो भी आया है। और अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं भी आया है तो हम देख के बता सकते हैं, हो सकता है वहाँ कोई इन्फेक्शन हो, है ना? तो आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, बिना देखे वो चीज़ की दवा नहीं दी जा सकती।
1: तो बीएचयू आवे कोई
2: हाँ, BHU आ जाइए, या आसपास अगर कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है तो आप वहाँ दिखा लीजिए।
1: अच्छा ठीक है
3: ठीक
1: डॉक्टर
3: है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अंगनैया में फोन करे बदे। हाँ डॉक्टर साहिबा, गर्भवती महिला लोगन बदे पपीता आप मना करत रहनी
2: हाँ, पपीता, कच्चा पपीता मेनली मना होता है क्योंकि वो नुकसान करता है, उष्ण होता है। और ऐसे ही एलोवेरा भी नहीं लेना चाहिए, वो भी उष्ण होता है। जैसे लोग कहते हैं एलोवेरा खाना
3: फोन
2: है,
3: आवा थे एक थे।
2: ठीक।
4: हेलो
3: हेलो,
1: हेलो।
4: हाँ भैया बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे थे, अपना नाम बताएं।
1: हम जंगीपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, रितेश मिश्रा नाम है।
3: अच्छा रितेश मिश्रा भैया, हंसत काहे हुवन, कार्यक्रम में फोन कइले हुवन तब बताएं, का जानल चाहत हुवन?
1: दरअसल मेरी मम्मी और मेरा दोनों लोग का घुटना बहुत दर्द होता है।
4: अच्छा, का उम्र है भैया तुम्हार?
1: मेरा उम्र 15 साल है और मेरी मम्मी का उम्र लगभग 35-36 साल है।
3: अच्छा, डॉक्टर साहिबा से बात करी हूँ, लाइन पर है, आपका बात सुनत है, बताएं डॉक्टर साहिबा।
2: आपकी उम्र 15 साल है, 15 साल में घुटना नहीं दर्द करना चाहिए। अगर आपका घुटना दर्द कर रहा है, इसका मतलब आप बैठे बैठे काम करते हैं, ज़्यादा आप व्यायाम नहीं करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, रात को देर से सोते हैं। मम्मी का कर सकता है क्योंकि मम्मी की उम्र 35 साल है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो उनको कैल्शियम का आप सप्लीमेंट दे सकते हैं, दूध दें और ऐसी चीज़ों का सेवन कराएं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। और उसके अलावा जो आयुर्वेदिक तेल आते हैं, जैसे महानारायण तेल है और भी कुछ तेल है, उनसे मालिश करके सिकाई कर सकते हैं। लेकिन आपका घुटना दर्द करना ठीक नहीं है, आपको व्यायाम करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए।
4: खान पान में भी अपने सुधार करें।
2: और खान पान में
4: हाँ।
2: बाहर की चीज़ खा रहे होंगे आप, अगर बाहर की चीज़ खाएंगे तो आपको पोषण नहीं मिलेगा।
3: ठीक है भैया, ये कुल चीज जो डॉक्टर बहनी बतावा थी नेकर ध्यान रखें तो जरूर आपके राहत मिली। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद अंगनैया में फोन करे बदे। हाँ डॉक्टर बहनी, बार बार हम लोग बात कर रहे थे और बात बीच में फोन आ जाता, अच्छा भी लगा था कि श्रोता भैया बहनी लोगन से हम
2: हाँ
3: लोगन
2: जी।
3: जुड़ल ली। अच्छा बात हम लोगन आहार विहार का करत रही है, गर्भवती महिला लोगन के आहार का बात के लिए, बुजुर्ग महिला लोगन बदे भी कुछ हो बताएं।
2: हाँ, जो बुजुर्ग मतलब जिनका माहवारी चली जाती है, जब पीरियड आना खत्म हो जाता है, तो इसके बाद इस्ट्रोजन जो एक हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। अगर वो कम हो जाता है तो हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, जोड़ों में दर्द होता है, थकान बढ़ जाती है। तो इसके लिए है जो हमारी खून को बढ़ाए, ऐसी ऐसी हम हरी सब्जियों का सेवन करें, दूध का सेवन करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। ऐसे ही सोयाबीन है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, इसका सेवन करना चाहिए। रागी एक वो होता है, रागी का सेवन
4: अनाज,
2: करना चाहिए।
4: अनाज
2: हाँ,
4: होता है।
2: एक
4: हाँ
2: मोटा अनाज होता है, आप
3: जी।
2: उसका सेवन करना चाहिए। ये सब चीजें फायदा करती हैं।
3: अच्छा बहुत बहनी लोगन ई शिकायत करेलिन कि हमके बहुत कमजोरी रहले, बहुत थकान रहेले, तो ओकरे बदे उनके का ऐसन खाए के चाहिए कि

0: चोरी ना हो। कभी कभी ई जांच करावे लेन तो ई दिखाई देला रिपोर्ट में कि थायराइड हो गई है, तो ऐसे भी कमजोरी होले, चाहे एनीमिया हो गई है ऐसे भी कमजोरी होले। तो वैसन कौन उपाय करें कि ई सब बीमारी से भी निजात मिले और उनका थकावट भी दूर हो?
1: हाँ, कमजोरी के ये कारण होते हैं, जैसे एनीमिया है मतलब खून की कमी होना, थायराइड की समस्या होना, या हम पर्याप्त समय पे और पर्याप्त मात्रा में भोजन ना लें, या हमारी नींद पूरी ना हो, तो ये सब कमजोरी के कारण होते हैं। तो इसके लिए एक तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेनी चाहिए, और भुना चना, गुड़, दालें, तिल, मौसमी फल, ये सब लेने चाहिए। लेकिन अगर थायराइड और एनीमिया की समस्या है तो इसके लिए आपको दवाओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके
0: एक
1: लिए
0: एक फोन
1: खून की
0: आवत है
1: जाँच
0: मैडम।
1: कराएँ। हेलो,
2: हेलो।
3: हाँ
2: हेलो,
3: हाँ भाई, आप अपने नया कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। अपन नाम बता दिए, कहाँ से बोलते हैं?
2: हम जौनपुर से बोल रहे हैं सर।
3: हाँ, नाम बताइए अपन।
2: नाम है कबिलास। सर,
3: हाँ, तो डॉक्टर साहब लाइन पर हैं, आपका जो प्रश्न हो के पूछे आप।
2: ऐसा है कि हम जैसे खाना खाने लगते हैं तब, या पैसा गिनने लगते हैं, कदम चलाने लगते हैं, हमारा दाहिना हाथ कांपता है सर।
1: अच्छा, आपकी उम्र कितनी है?
2: उम्र है 61 साल।
1: 61 साल। तो आपका दाहिना हाथ कांपता है ये सब करने पे ना? हाँ, तो इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। आपको इसको मेनली तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है न्यूरोलॉजी से भी संबंधित हो सकता है। तो आप एक बार इसके लिए न्यूरोलॉजी में दिखा लीजिए।
2: चलो ठीक
0: हाँ,
2: है सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और कहीं मिलती बहन, देखा समय भी हो गया, डॉक्टर बहनी से तो बहुत बतियावे का मन करा था, लेकिन अब समय समाप्ति की ओर हो था। तो डॉक्टर बहनी, आप कार्यक्रम में एलिन हाँ, और बहनी लोगन के रसायन चिकित्सा के विषय में इतना बढ़िया बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी देलिन है, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: कही ललित
0: हाँ हो
3: कि अब चले के बेला हो तो चला चल जाए।
0: नमस्ते।
3: नमस्ते।

महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम मंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव। पहले सुनते हैं इनका गाया एक दादरा।

0: in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Ulaanbaatar, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history and leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेस्सी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसने हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल

0: पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

0: बेल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहाने तराने।

कहानी तराने कार्यक्रम में मैं स्तुति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जब भी हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर पर नज़र डालते हैं तो हर मोड़ पे सामने आते हैं कुछ रोचक किस्से और कुछ रोचक कहानियाँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे 1970 में आई फिल्म कटी पतंग के उस खूबसूरत गीत की, जिसे अपनी जादुई आवाज से सजाया किशोर कुमार ने और इसकी दिलकश धुन बनाई आरडी बर्मन ने। लेकिन अब जरा ठहरिए और इस गाने के पीछे छुपी उस खासियत को समझिए जो इसे सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक एहसास बना देती है। दरअसल किशोर कुमार का गाने का अंदाज हमेशा थोड़ा अलग, थोड़ा इम्प्रोवाइज होता था। वो सिर्फ लिखे हुए सुर नहीं गाते थे बल्कि उन्हें जीते थे, और इस गीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने इस गाने को बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस की तरह गाया, यानी कोई बनावट नहीं, कोई जरूरत से ज्यादा तकनीकी परफेक्शन नहीं, बस एक नेचुरल फ्लो, जैसे कोई शख्स सामने खड़े होकर दिल से गुनगुना रहा हो। अब जरा इस बात को और महसूस कीजिए। स्क्रीन पर थे राजेश खन्ना, जिनकी अदाओं में पहले से ही एक अलग सचाम था, और जब उनके ऊपर किशोर कुमार की ये प्लेफुल मस्ती भरी आवाज आई तो ऐसा लगा जैसे आवाज और चेहरा दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही इंसान के दो रूप हैं। यही कारण है कि जब आप ये गाना सुनते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि कोई गायक गा रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि राजेश खन्ना खुद गुनगुना रहे हैं। और दोस्तों, यही तो उस दौर की असली खूबसूरती थी, जहां प्लेबैक सिंगिंग सिर्फ गाना नहीं था बल्कि एक्टर की आत्मा बन जाना था।

हाँ जी, तो अब बात करेंगे 1971 में आई फिल्म अमर प्रेम के उस गीत की, जिसके बोल सिर्फ बोल नहीं बल्कि एक गहरी सोच थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गीत चिंगारी कोई भड़के की, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने। इस गीत में उन्होंने प्यार, दर्द और जिंदगी की उलझनों को बहुत ही सरल लेकिन गहरे शब्दों में बयां किया था। हर अंतरा एक अलग भावना को छूता है, कहीं दर्द है, कहीं शिकायत और कहीं एक गहरी स्वीकार्यता। और अब जरा महसूस कीजिए किशोर कुमार की गायकी को। आमतौर पर उन्हें एक प्लेफुल और एनर्जेटिक सिंगर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस गीत में उन्होंने अपनी आवाज का एक बिल्कुल अलग रंग दिखाया। उनकी आवाज में जो ठहराव था, जो दर्द था, वो सीधे दिल को छू जाता था, और यही वर्सैलिटी उन्हें खास बनाती है। स्क्रीन पर ये गीत फिल्माया गया था राजेश खन्ना पर। उनका शांत, गंभीर और भीतर से टूटे हुए इंसान का एक्सप्रेशन इस गीत को और भी गहरा बना देता है। जब वो नदी में नाव पर बैठकर ये गीत गुनगुनाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से बात कर रहे हों। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त आर डी बर्मन ने बहुत ही

कम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया था ताकि गाने की इमोशनल डेप्थ और भी उभर कर सामने आए, और लिरिक्स जो लिखे थे आनंद बख्शी ने आज भी सीधा दिल को छू जाते हैं।

हाँ जी, तो दोस्तों जब 80 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा ने एक नए दौर में कदम रखा, तभी एक ऐसा गीत आया जिसने म्यूजिक का पूरा मूड ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1980 में आई फिल्म कर्ज के उस गीत की, जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस दौर का ट्रेंड सेटर बन गया। इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि 70 के दशक तक हिंदी फिल्म संगीत में मेलोडी और क्लासिकल बेस ज्यादा हावी था, लेकिन ओम शांति ओम गीत में पहली बार इतने बड़े स्तर पर डिस्को स्टाइल रिदम और वेस्टर्न बीट्स का इस्तेमाल हुआ। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, सिंथेसाइजर और फास्ट पेस्ड रिदम पैटर्न, इन सब ने मिलकर इस गाने को एक बिल्कुल नया मॉडर्न साउंड दिया। इस गाने को आवाज दी थी किशोर कुमार ने, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ उनकी आवाज भी ट्रेडिशनल नहीं बल्कि थोड़ी स्टाइलाइज्ड और एनर्जेटिक रखी गई, ताकि गाने का डिस्को वाइब पूरी तरह उभर कर आए। और अब बात करें स्क्रीन की, तो इस गाने पर थिरकते नजर आए थे ऋषि कपूर। उनका एनर्जेटिक डांस, चमकदार कॉस्ट्यूम और स्टेज परफॉर्मेंस स्टाइल उस समय के दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था। कहा जाता है कि इस गाने के बाद ऋषि कपूर यूथ आइकन के रूप में और भी मजबूत हो गए। इस गीत का एक और खास पहलू है इसका पिक्चराइजेशन। ये एक स्टेज परफॉर्मेंस के रूप में फिल्माया गया था, जिसमें लाइटनिंग, कोरियोग्राफी और कैमरा मूवमेंट उस दौर के हिसाब से काफी एडवांस माने गए थे। और दोस्तों, यही वजह है कि ओम शांति ओम सिर्फ एक हिट गाना नहीं रहा, बल्कि इसने बॉलीवुड में डिस्को और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को मेन स्ट्रीम बना दिया। इसके बाद 80 के दशक में डिस्को बेस्ड गानों की एक पूरी लहर सी आ गई थी।

हाँ जी, तो दोस्तों 70 के दशक में रोमांस का एक अलग ही अंदाज हुआ करता था। न ज्यादा दिखावा, न ज्यादा शोर, बस सादगी, मासूमियत और दिल से निकले हुए एहसास। और इन्हीं एहसासों को बेहद खूबसूरती से पेश करता है ये गीत, जो कि है फिल्म अजनबी का। गीत के बोल हैं, हम दोनों दो प्रेमी। आरडी बर्मन का नाम आते ही हम अक्सर एक्सपेरिमेंटल और वेस्टर्न म्यूजिक की बात करते हैं, लेकिन इस गीत में उन्होंने सिंप्लिसिटी को ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनाया। गाने का रिदम बहुत हल्का और प्लेफुल है, जिसमें सॉफ्ट परकुशन, गिटार और स्मूथ फ्लो इस्तेमाल किया गया है, यानी ना कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट और ना ही कोई हॉच पॉच वाला अरेंजमेंट, बस एक ऐसा साउंड जो सुनते ही दिल को सुकून दे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर, ये जोड़ी अपने आप में ही एक जादू थी। इस गाने में दोनों की आवाजों का बातचीत वाला स्टाइल बहुत ही नेचुरल लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे दो लोग सच में एक दूसरे से बात करते हुए गा रहे हों। साथ ही आनंद बख्शी ने इस गाने में प्यार को बहुत ही सरल और रिलेटेबल अंदाज में लिखा है, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। ये लाइन इस तरह की रिबेलियस रोमांस को दिखाता है, जहां दो लोग दुनिया की परवाह किए बिना बस अपने प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। राजेश खन्ना का चार्म और जीनत अमान की मॉडर्न कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, इन दोनों की ही जोड़ी इस गीत को और इंटरेस्टिंग बना देती है। आज भी जब ये गाना बजता है तो एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ जाती है। ये उस दौर का आईना है जहाँ प्यार में सादगी थी लेकिन एहसास बेहद गहरे थे। इसी के साथ दोस्तों, अब सुहाने तराने कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी स्तुति को दीजिए अनुमति, मिलूंगी आप सब से फिर एक नए कार्यक्रम, फिर एक नए दौर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाने तराने। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्तुति मिश्रा की थी।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। डीटीएच, डीआरएम, वेब्स, ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन EIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत, जो बचपन में एसिड अटैक का सामना भी कर चुकी हैं। इस संवाद में उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, करियर और सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। चर्चा का संचालन कर रहे हैं मनीष सिंह।
2: नमस्कार, मैं मनीष सिंह वाराणसी में हूँ और हमारे सामने हैं मंगला कपूर जी। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन?
3: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की और साथ ही तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया, तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती, जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए, कुछ पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए।
2: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल गई?
3: ऐसा है, एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, मैं तो खैर टूट ही गई थी। सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से हम लोग, पूरा परिवार डिस्टर्ब था। तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही।
2: किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सर्वाइव किया?
3: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है, और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से। तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, फिर से पढ़ाई चालू करो। और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था, फिर वहाँ मैंने संगीत सीखना शुरू किया और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश से घर के कोने में बंद हो गई थी। और ये जो उम्र बढ़ रही थी, लिमिटेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी आगे। तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे, फिर मैंने राह पकड़ी संगीत की।
2: संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत से?
3: ऐसा, मेरे पिताजी सितार बजाते थे तो उनको संगीत बहुत पसंद था, और मेरा गला बाकी बचपन से बहुत अच्छा था, तो बड़े बड़े संगीतज्ञ भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो मेरा गला अच्छा था तो कभी कुछ बंदेश, कभी कुछ सिखाए जाते थे। तो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला, और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, ये सोच के नहीं ये कभी मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं उलझी रहे, कुछ करती रहे, उसी बहाने लोगों का सामना करना सीखी, लोगों से बात करना सीखी, तो फिर संगीत को पकड़ा। उसके बाद फिर उसी पे चलती गई। फिर बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने की, और स्टेट प्रोग्राम फिर मैं करने लगी, जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई। और विशेष बात बताने लायक यही है कि जब मैं पीएचडी करने के बाद जब नौकरी ढूंढने लगी, तो फिर बीएचयू में मुझे नौकरी मिल गई, और फिर वहाँ अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया, तो बच्चों के साथ रम गई, फिर अच्छी तरह अपने कर्म को निभाती।

0: नहीं सिखाना बच्चों के साथ. फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर लीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ.
1: क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा बीएचयू में शिक्षक के दौरान?
0: बीएचयू ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया. जब मैं सीख रही थी, मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे मतलब बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने. उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मतलब बहुत अच्छा गाती है तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच ही जाओगी. तो वाकई आवाज अच्छी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई. और मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बच्चों को पीएचडी भी कराई मेरे अंदर में. तो लोग मुझे कभी उन्होंने न टीचर मुझे समझा न मैंने समझा कि स्टूडेंट है, अपने बच्चों की तरफ वो समझते. और वो लोग भी मातृवत और बहुत अच्छे मुझे माँ ही कहते थे अभी तक. हालांकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्थापित हो गए हैं, लेकिन तो प्यार करते हैं उनका. फोन वगैरह आता रहता, आते हैं तो मिलने भी आते हैं. तो वो चल रहा है. जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, तो उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत ये चाहे ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले. सीरत मैंने इसीलिए लिखी. और उसको लिखवाने के पीछे भी एक महिला हमारे कॉलेज में ही हिंदी की प्रोफेसर थी, उन्होंने जब मेरे बारे में थोड़ा सा सुना तो उन्होंने कहा कि ममता अपनी कहानी को लिख डालो, ये और लोगों को बहुत प्रेरणा देगी. तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर किस तरह सीरत सामने आई. तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची तो फिर वहाँ से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी. उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बनी और महाराष्ट्र में वो प्रदर्शित भी की गई. देखने को मिलेगी सभी को.
1: पद्मश्री सम्मान क्या खास मायने हैं इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
0: अरे मुझे बहुत मायने रखता है कि मतलब सोच नहीं सकती. उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल टीवी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं. मेरा काम देख करके मेरी लगन और मेरी निष्ठा, यानी 36 ऑपरेशन के बाद शरीर टूट जाता है. मेरी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, तरह सा भी कहीं गिर जाती हूँ तो टूट जाती है, लेकिन वो भी झेला. सब झेलते हुए भी मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ और अभी तक रिटायर हो गई हूँ लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है. मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ. और 6वीं पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है, फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी.
1: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
0: शरीर बहुत मायने नहीं रखता. मैंने अच्छे अच्छे लोगों को दिखा है. एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है. तो जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है तो शरीर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा. जो बहुत खूबसूरत रह जाने वाले लोग थे लेकिन अंत में देखिए लोग कैसे लाचार हो जाते हैं. तो वो तो देखिए शरीर का धर्म है, होगा ही. लेकिन मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया. तो ये विशेष रूप से जो विकृति आई जो कि बचपन से ही शुरू हो गई. मुझे संबोधन मिलते थे इसका मुंह कैसा है, और उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं. लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी. कर्म लेकिन अच्छा करते रहे. कितने सारे एसिड अटैक विक्टिम तो बहुत सारे लोग काफी हुए. बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति होगी कैसे कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता. आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में. अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है. और आज तो बहुत सारे विकल्प हैं. आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में, इतने सारे और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं. तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना संवारे और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पर चलता रहे जब तक जीवित, लोगों के लिए प्रेरणा बने.
1: क्या बाकी रह गया आप कुछ करने के लिए कला के क्षेत्र में?
0: कोई भी क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है. और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है. अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है. अंतिम समय तक लड़ना चाहिए. और जो भी उससे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ. आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी।
1: आकाशवाणी से बात करने के आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे मनीष सिंह।

0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
2: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

0: आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस AIRVNS@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, अब आप मेल के जरिए भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस में आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचानी है। AIRVNS@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS के बाद अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए भी, और सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो अब हम हैं आपके साथ हर घड़ी, हर पल और हर प्लेटफॉर्म पर। आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। दूरदर्शन का DD फ्री डिश अब नए अवतार में, यानी फिर एक बार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। जी हाँ, DD फ्री डिश में अब हैं 100 से ज्यादा TV चैनल्स, 51 एजुकेशनल यानी शैक्षिक चैनल्स, साथ ही 48 रेडियो चैनल्स भी। बस एक बार सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई मासिक या अतिरिक्त खर्च नहीं। डिजिटल क्रांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाइए, DD फ्री डिश घर लाइए। जी हाँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर DD फ्री डिश का नया अवतार, यानी मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।
1: मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है

0: कहते हैं हर सुबह अपने साथ दो चीजें जरूर लेकर आती है, एक नई शुरुआत और कुछ नई बातें सीखने का मौका। बस जरूरत है उन बातों को जानने और समझने की।
1: बिल्कुल, क्योंकि कैलेंडर की हर तारीख सिर्फ बदलती ही नहीं, बल्कि अपने साथ इतिहास के कुछ सुनहरे पन्ने, समाज से जुड़े अहम संदेश और प्रेरणा की नई कहानी भी लेकर आती है।
0: तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातों के साथ, जिन्हें आप तक पहुंचाने के लिए आपके साथ हैं आपके ये दो रेडियो साथी, यानी कि मैं जय शालिनी।
1: और मैं आराध्या। तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार साथियों। कहते हैं ना, किसी देश की असली ताकत उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं। इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, यह दिवस उन सभी लोक सेवाओं को समर्पित है जो प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, आपदा प्रबंध, परिवहन और अन्य सरकारी सेवाओं के माध्यम से समाज के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 में की थी। इसका उद्देश्य केवल उत्कृष्ट लोक सेवाओं का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देना भी है।
1: अक्सर हम सरकारी सेवाओं की चर्चा शिकायतों के संदर्भ में करते हैं, लेकिन ऐसे हजारों अधिकारी और कर्मचारी भी हैं जो सीमित संसाधनों में भी पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों तक सेवाएं पहुंचाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, महामारी का समय हो या दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें लोक सेवकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
0: आज तकनीक के बढ़ते उपयोग ने लोक सेवाओं को और अधिक सुगम बना दिया है। ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस, डिजी लॉकर या अन्य शिकायत पोर्टल जैसी सुविधाएं नागरिकों के जीवन को आसान बना रही हैं।
1: लेकिन तकनीक के साथ साथ संवेदनशीलता भी उतनी ही है आवश्यक है। एक अच्छा लोक सेवक केवल नियमों का पालन ही नहीं करता, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझते हुए समाधान भी खोजता है।
0: आज का दिन हमें ये याद दिलाता है दोस्तों कि एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान केवल अच्छे कानूनों से नहीं, बल्कि उन्हें ईमानदारी से लागू करने वाली लोक सेवा व्यवस्था में होती है।
1: आइए इस अवसर पर उन सभी लोक सेवकों का सम्मान करें जो समाज की भलाई के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, और हम स्वयं भी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर उनके प्रयासों में सहयोग करें।
0: और इन जानकारियों के बाद अब बारी है मनोरंजन की।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 0542227658।
3: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
7: दोस्तों समाज की प्रगति तभी सार्थक

0: होती है जब उसमें हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिले। इसी सोच के साथ हर वर्ष आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है।
1: इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में विधवा महिलाओं के अधिकारों, सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
0: दुनिया के कई हिस्सों में आज भी अनेक विधवा महिलाओं को सामाजिक भेदभाव, आर्थिक कठिनाइयों और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और संपत्ति के अधिकार जैसे बुनियादी मुद्दे भी कई बार उनके लिए चुनौती बन जाते हैं।
1: हालांकि समय बदल रहा है, आज अनेक महिलाएं अपने आत्मविश्वास, शिक्षा और मेहनत के बल पर नई पहचान बना रही हैं और समाज भी धीरे धीरे सकारात्मक सोच की ओर बढ़ रहा है।
0: यह दिन केवल सहानुभूति व्यक्त करने का नहीं, बल्कि समान अवसर, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का संदेश देता है।
1: यदि परिवार, समाज, शासन मिलकर सहयोग करे तो हर महिला सम्मान, आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकती है।
0: एक संवेदनशील समाज वही होता है जहाँ किसी व्यक्ति की पहचान उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और व्यक्तित्व से होती है।
1: आइए इस अवसर पर हम सभी समानता, सम्मान और संवेदनशीलता का संकल्प लें और ऐसा समाज बनाने में अपना योगदान दें जहां हर महिला गरिमा के साथ जीवन जी सके।
0: इसी के साथ दोस्तों, इतिहास उन व्यक्तियों को हमेशा याद रखता है जिनके विचार और कार्य देश की दिशा को प्रभावित करते हैं। 23 जून को हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के रूप में स्मरण करते हैं।
1: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, सांसद और स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री भी रहे हैं।
0: वे कम आयु में ही यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सबसे युवा कुलपति बने। शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका दृष्टिकोण दूरदर्शी माना जाता है।
1: बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला।
0: जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर उनके विचार व्यापक चर्चा का विषय रहे। वर्ष 1953 में जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया और 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया।
1: उनके जीवन में हमें राष्ट्र सेवा, शिक्षा के महत्व, नेतृत्व की क्षमता और अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा मिलती है। उनके योगदान का अध्ययन भारतीय राजनीतिक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।

0: आराध्या, जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां 100 साल की उम्र तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, तो क्या तुम यकीन करोगी मेरा?
1: सच में 100 साल? लगता है वहां की घड़ी थोड़ी धीरे चलती है।
0: घड़ी नहीं, बल्कि वहां के लोगों की जीवन शैली कुछ अलग होती है। इन्हीं खास क्षेत्रों को हम ब्लू जोन कहते हैं।
1: अच्छा, लेकिन ब्लू जोन होता क्या है?
0: ब्लू जोन दुनिया के वे क्षेत्र हैं जहाँ लोग औसतन अधिक समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन जगहों पर 90 और 100 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है।
1: तो क्या इसका राज कोई जादुई दवा है?
0: बिल्कुल भी नहीं, इसका रहस्य है संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव कम रखना, परिवार और समाज से जुड़े रहना।

0: दोस्तों, अब बारी है उस सेगमेंट की जहां हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वे हमारे सोचने का नजरिया भी बदल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी यूथ डायरी की।
1: तो आज की हमारी यूथ डायरी का हिंदी का शब्द है दुर्भेद्यता। दुर्भेद्यता, जिसका अर्थ है अभेद्यता या किसी वस्तु स्थान का ऐसा होना जिसे भेदना या पार करना कठिन हो। और इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, पुराने जमाने के किलों की दीवारें इतनी मजबूत और दुर्भेद्य होती थी कि दुश्मन उन्हें आसानी से पार नहीं कर पाते थे। या फिर इस दुर्भेद्य चक्रव्यूह को भेदना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं थी।
0: और दोस्तों, हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है विम्सिकल, WHIMSICAL। विम्सिकल का अर्थ होता है सन की या मन मौजी। एंड इन सेंटेंस वी कैन से इट एज द विम्सिकल डेकोरेशन मेड द रूम फील मैजिकल। और वी कैन से सी हैज अ विम्सिकल सेंस ऑफ ह्यूमर। और वी कैन ऑल्सो से इट एज ही हैड अ विम्सिकल आइडिया टू पेंट हिज रूम लाइक अ रेनबो।
1: अब इसी सोच के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, यानी इतिहास की ओर। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि बीते हुए कल में क्या कुछ घटित हुआ और उससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है।
0: आज ही के दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था, इसीलिए आज के दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं।
1: और आज ही के दिन सन 1867 में अमेरिकी आविष्कारक क्रिस्टोफर लेथम शोल्स को टाइपराइटर के आविष्कार के लिए पेटेंट

0: मिला था। इन्होंने कार्टी कीबोर्ड वाला टाइपराइटर बनाने के लिए जाना जाता है।
1: इसके साथ ही दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटिंग के पिता माने जाने वाले एलन ट्यूरिंग का जन्म आज ही के दिन 1912 में इंग्लैंड में हुआ था।
0: और दोस्तों, आज ही के दिन 1925 में जॉन शेफर्ड बैरन का जन्म हुआ था, जिन्होंने एटीएम मशीन का आविष्कार किया था।
1: और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि 2014 में आज ही के दिन गुजरात के रानी की वाव और हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था।
0: दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की, लेकिन उससे पहले बारी है हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की।
1: तो कल का हमारा आपसे सवाल था कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका सही जवाब है उड़ीसा।
0: और इसका सही जवाब देने वाले साथियों का नाम है मुकेश कुमार प्रजापति सिगरा वाराणसी से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से। और इसके साथ ही हैं बाबू दिव्यांश। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। और इसी के साथ खरगोन मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण चौहान।
0: और ग्राम खैवांग तहसील महेश्वर से प्रेमलता प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। नेपानगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे। संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई
1: रायकवार। और इसी के साथ दोस्तों, अब तैयार हो जाइए आज के प्रश्न के लिए, जो कि है हाल ही में INS दूनागिरी संशोधक और अग्रय को किस शहर में नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। हाल ही में INS दूनागिरी संशोधक और अग्रय को किस शहर में नौसेना में शामिल किया गया है।
0: तो दोस्तों, पता है ना जवाब आपको कहाँ भेजना है? जी हाँ, आपको अपना जवाब हमारे इंस्टाग्राम youth AIR पर या हमारा ईमेल पता youth AIR पर भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए।
1: तो दोस्तों, फटाफट से अपने जवाब भेजिए और तब तक के लिए आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो इस गाने के बाद अब बारी है हमारे श्रोताओं को रोजगार सूचना बताने की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP SSSC ने गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती यानी केन सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट की आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी।
1: और आवेदन करने की शुरुआती तिथि है 7 जुलाई 2026 से अंतिम तिथि है 28 जुलाई 2026 तक। इसके लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष होनी चाहिए। कुल पदों की संख्या 1182 है और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट UP SSSC.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: वेबसाइट एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, UP SSSC.gov.in। वैसे आराध्या, ये तुम मोबाइल पर क्या बार बार देख रही हो?
1: मैं कुछ नई स्किल सीखने की सोच रही हूँ। आज के समय में पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला, कुछ नया सीखना भी जरूरी है।
0: हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे तुम क्या सीखना चाहती हो?
1: मुझे हिंदी टाइपिंग, कंटेंट राइटिंग में रुचि है। इसके अलावा कंप्यूटर की जानकारी भी बढ़ाना चाहती हूँ।
0: बहुत बढ़िया। मैं भी ना हाल फिलहाल वीडियो एडिटिंग सीख रही हूँ। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मजा आने लगा है।
1: ये बात तो है, नई चीजें सीखने में शुरू में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन धीरे धीरे सब आसान हो जाता है।
0: ये तो सही कहा। और इसके साथ ही आजकल तो YouTube और इंटरनेट की मदद से घर बैठे हुए बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
1: हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अपनी सुविधा के अनुसार सीखने का मौका भी मिलता है।
0: हाँ, और मुझे लगता है ना कि हर छात्र को पढ़ाई के साथ कोई ना कोई स्किल जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमें भविष्य में जरूर फायदा मिलता है।
1: बिल्कुल, अगर किसी को बोलने का शौक है तो कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकता है, और अगर किसी को लिखने का शौक है तो राइटिंग स्किल्स।
0: और अगर किसी को डिजाइनिंग या वीडियो बनाना पसंद है तो वो भी एक अच्छा स्किल है। आजकल इनकी काफी डिमांड भी है।
1: एक और फायदा है यह है कि नए नए स्किल्स सीखने के लिए हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम खुद कुछ नया करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: हाँ, और खाली समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, वरना कई बार समय यूं ही निकल

0: जाता और पता ही नहीं चलता। और दोस्तों, जब हम मोबाइल पर फालतू में रील्स पर समय बिताते हैं, तो क्यों ना उस समय को यूटिलाइज किया जाए किसी अच्छे काम में।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो व्यक्ति हमेशा सीख सकता है, वही आगे बढ़ सकता है।
0: मैं भी अब तय कर चुकी हूँ कि कुछ महीनों में एक और नया स्किल सीखूंगी।
1: बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही कोशिश करूंगी और अपने दोस्तों को भी कुछ नए स्किल सीखने के लिए बढ़ाऊंगी।
0: सही कहा, नए स्किल्स हमें आत्मनिर्भर तो बनाते हैं आराध्या, और इसके साथ ही हमें आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं।
1: तो चलो, आज से ही हम दोनों कुछ नया सीखने की शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल, सीखते रहना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, आइए सीखने सिखाने के इसी क्रम को आगे रखते हैं, पर उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही है कि वक्त हो चला है हमारे जाने का। तो दीजिए इजाजत
1: मुझे यानी जयशालिनी को
0: और मुझे आराध्या को।
1: नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युवावाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।

की टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम प्रमोद कुमार सिंह। लखनऊ के बहुमंजिला इमारत में चली रहल कोचिंग आ एनिमेशन सेंटर में काली लागल आग के घटना के जांच बदे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और विशेष जांच दल एसआईटी के सदस्यों का एगो संयुक्त टीम आज मौका पर पहुंचल। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि

0: आज मौका पर पहुंचलस। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पुलिस यह मामला में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा कैले हो। एमए से 4 जमी के काली रात ही गिरफ्तार कर लिया गई। सतही लखनऊ विकास प्राधिकरण, दमकल विभाग और बिजली विभाग का 4 गो अधिकारियों के मुअत्तल कर दिया गई बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मामला के जांच बदे 2 सदस्यों का विशेष जांच दल बनावल गई हो। एसआईटी ने धर्मार्थ कार्य पर्यटन और संस्कृति विभाग का अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात, एडीजी जोन लखनऊ जोन प्रवीण कुमार के शामिल कर गई हो। मुख्यमंत्री जांच दल के 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपले का निर्देश दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दुसरका नागरिक अलंकरण समारोह में 63 विभूतियों के पद्म अलंकरण सम्मान से सम्मानित कर लीन। सम्मानित होके वालन में 4 लोग ही प्रदेश के हुए। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में शामिल हो। वर्ष 1954 में ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के मौका पर घोषित किया जाला। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन, व्यापार और उद्योग के सफल कई गो क्षेत्र में बढ़िया और खास योगदान बदे दिया जाला। गृहमंत्री अमित शाह कल आने के अनुच्छेद 370 हटौले के सतही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपना साकार हो गये हो। श्री शाह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे उन्हें देश के महानतम नेता लोगों में से एक बतौले। नई दिल्ली में नैफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में वहां के कहली कि डॉक्टर मुखर्जी देश का एकता और अखंडता के बनावे रखने में खास भूमिका निभाले।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का और मूत जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: यह मौका पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में पुष्पांजलि अर्पित करके डॉक्टर मुखर्जी के श्रद्धांजलि देने। अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावा में कथित हेराफेरी के जांच कई रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी आज अपन शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दे। राज्य सरकार कथित वित्तीय हेराफेरी आ पैसा के दुरुपयोग के जांच बदे ई उच्च स्तरीय पैनल बनौले रहे। एसआईटी के सदस्य पिछला हफ्ता कई गो संदिग्धन और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ कई। प्रदेश सरकार वाराणसी रोपवे परियोजना बदे किराया का अधिसूचना जारी कर दे हो। कैंट विद्यापीठ रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशन के बीच न्यूनतम किराया 10 रुपया, अधिकतम किराया 50 रुपया तय कई गई हो। कैंट से गोदौलिया ले जतरा खाली 85 रुपया में हुई। काशी स्मार्ट पास धारक के किराया में 20% का छूट मिली। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी हो। मौसम विभाग अगला 4 दिन ले पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम सुखल रहले और कुछ जगहों पर लू चलने का उम्मीद जतौले हो। हालांकि कुछ जगहों पर अगला 24 घंटा में गरज चमक के साथ हल्का है बरखो भयले के उम्मीद जतौले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में अरहर की खेती की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर सुरेश कुमार कन्न

0: नौजिया और राकेश यादव की बातचीत के अलावा सुनिएगा हेमंत कुमार श्रीवास्तव का गाया लोकगीत। रात 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे अशोक खोसला। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी का शहनाई वादन। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर रसरंग और रात 8:15 पर रस माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें, कल यानी 24 जून सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में मक्का की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में पेट संबंधित रोग कारण लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार विषय पर लीजिएगा जानकारी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राजेश पांडे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर और दिन में 12:45 पर सुनेगा अंशुमान महाराज का सरोद वादन। रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान का सरोद वादन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:00। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में होगी चर्चा, साथ ही गृहलक्ष्मी टिप्स सेहत ज्ञान के अलावा सुनेगा गीत संगीत। कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 2:30 पर। युवा साथियों का प्रोग्राम युवा वाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में कृषि में AI तकनीक की उपयोगिता, इस विषय पर डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा सुनिएगा मैंगी राम प्रजापति और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 सुनिएगा ए हरन हरिहरन की गाई गजलें और दिन में 12:30 पर कलाकार होंगी कुमारी सुरुचि। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। कल रात 10:00 वट वृक्ष कार्यक्रम का प्रसारण होगा। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कुणाल गांजावाला की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म क्यों की का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म किक से। आवाज योयो हनी सिंह और जसमिन की है, गीत और संगीत योयो हनी सिंह का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: पंचो, राम
1: राम राम।
0: राम।
1: और बिरजू भैया, क्या हाल चाल बाए?
0: देखा बुझाओ भैया, हाल चाल बड़ा बढ़िया हो भैया। आ देखा दऊ हो गरीब भुलायल बण, आ तनको समय अल्लाह की कृपा नहीं खै करत।
1: बड़ा दिन के बाद आज भेंट भइले तो से।
0: हाँ हाँ भैया एकदम। तो हूँ पता नहीं कहाँ आज झुरायल रहा भैया, खर पतवार में आ काजी का निराई फिराई करत रहा।
1: ये भैया देखा, खेती बाड़ी के जोन काम बाए ना, तो खर पतवार का माटी का काम बाए। आ जब वो
0: हाँ
1: काम ना होई तो भैया अपन खेती कैसे होई? अब
0: देखल
1: जैसा
0: देखली भैया एक दिन तो यथा आधाराम बिया डालतला, खर पतवार कुल कुदार फरसा से कोड़ के निकालत रहला हो। तो अच्छी बात है भैया, कौनो काम करा तो बढ़िया करा, सजो
1: ये
0: हो
1: भैया
0: करा।
1: जानत हुआ, जौन धाने के नर्सरी के जौन बीजड़ा होला ना, आ जितना साफ सुथरा रही, खर पतवार निकाल दे बा, उतने भैया जौन धान के नर्सरी के जौन बीज बा ना, उतने वो बिया बियाच करी।
0: अरे भैया बियाज के बात कैला है ना, तो भैया सही बात है हो। देखा बढ़िया से अगर काम हुई तो बियाज करबाई करी।
1: हाँ तो बिया छः बजे करी, एक चीज और जानत हुआ, माटी बढ़िया हो गई, खर पतवार निकल गया, आ ओकरे बाद अच्छे गुणवत्ता वाला बीज अगर मिल गई बा, खाद बढ़िया मिल गई बा, दवाई बढ़िया मिल गई बा, तो भैया नर्सरी तो एकदम बढ़िया ने होई।
0: अब देखा भैया बिया हुआ भी लेवा हो ना तो पंजीकृत दुकान से ही खरीदा, नहीं तो
1: हाँ
0: देखा भैया आजकल बड़ा धोखाधड़ी का भी मामला चलत हो बुझाऊन भैया।
1: अच्छा बिरजू भाई, जोन बात कहला है ना कि जोन बढ़िया और पंजीकृत दुकान से अपन बीज दवाई खाद कुल खरीदे के चाहिए, ताकि किसाने के साथ ही धोखा कभी ना हो।
0: अब देखा भैया गांव घर का किसान हो, बड़ा भोला भाला होला हो, आ बड़ा जल्दी ठगी के शिकार लोग हो ना। तो हम कहले भैया हो अगर तोहके बढ़िया से ना जानकारी है ना, तो जे विश्वसनीय गांव घर के भैया बाण उनके ले जाए के तब कौन चीज खरीदा।
1: माने जे के जानकारी बा, जे
0: हाँ
1: तनिका जानकार बा कि नहीं ये दुकाने पर अच्छी बीज दवाई मिलत बा, तो वो जे से खरीदी हैं तो वो धोखाधड़ी के शिकार ना हुई हैं।
0: हाँ भैया जो सचेत आदमी बाणा उनके लेके जा।
1: बिल्कुल जा भैया। अच्छा एक बात और है, जिसे धोखाधड़ी का बिरजू भैया बात कैला है ना, तो एक प्रकार का और धोखाधड़ी बड़ा तेज होत बा भैया, है
0: देखा भैया
1: मोबाइल मोबाइल से धोखाधड़ी।
0: समाज में भैया तरह तरह के देखा अपराध फैलल बा, वही में देखा एठे साइबर अपराध बा भैया।
1: ओ माने समझ गीला, जो मोबाइल वाली बतिया हम कहली तो वही तो, मतलब साइबर
0: हाँ
1: अपराध का
0: हाँ
1: शिकार बहुत लोग हो जात बाड़ा।
0: बहुत बहुत भैया। आ देखा हो कहल जाला ना कि मोबाइल बहुत नीक चीज भी है बहुत खराब है, अगर जानकार आदमी तो ओकरे बदे अति उत्तम बा, आ जेकरे जानकारी ना है भैया ना तो बिना वजह के जौन संदेश आवाला आ जौन काल आवाला अनजान काल ओके ना उठावे के चाहिए।
1: अच्छा कितना बढ़िया बात बतौलो भैया, यही से कहल जाला कि चेतले के चेत बिना चेते के मौत, समय के रहले व्यक्ति के अपन सचेत हो जाए के चाहिए। ई नहीं कि काम बिगड़ गए, लापरवाही हो गए तो भारी भरकम नुकसान तो हो जाए, तो ऐसे बड़ा सतर्क होए के चाहिए। मोबाइल पर भैया फोनवा आवेला, अब फोनवा पर जा कहीं से उनके ओटीपी गए, ओटीपी दा ओटीपी जैसे ही देला, वैसे खतरा हो गए, बैंक तोहार खाली हो गए, बैंक में जितना पैसा रख ले बड़ा कुल खाली हो गए।
0: पछताए वह पुरनिया कहलन कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत।
1: हाँ पुरनिया लोग कहाँ, अच्छा कहे का मतलब ये रहा ना कि खेत में जब तैयारी हो गई बा, पक गई बा, तो क्या अगोरा देखा, अरे
0: मचान
1: भैया
0: उचान भैया बना के रहा।
1: हाँ, तो सचेत होए के चाहिए भाई कि आग लगल तब कुआं खुदाई वाला काम ना करे के चाहिए, धोखा खैले के बाद सतर्क होबा तो कौन फायदा मिलल तो के।
0: अच्छा भैया मान ला उ तो बात कहबे किला, अगर मान ला बाई दवे तू धोखाधड़ी के शिकार भी हो गईला ना, तो हमार भारत सरकार समझला भैया एक हेल्पलाइन नंबर चलौले बा 1930, आ ऊपर तुरंत जाके कॉल करा आ उस।
1: साथे साथे भैया ना एक चीज और बा कि राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल बा, वह पर शिकायत दर्ज कर दा।
0: हाँ भैया ओकर ईमेल आईडी बा भैया भारत सरकार के
1: हाँ
0: हमरे,
1: हाँ
0: आ ऊपर जाके भैया शिकायत दर्ज करी बा। आ 24 घंटा के अंदर भैया अगर करा देते हुए आप ना, तो समझ
1: हाँ
0: ला कि आपके रुपया आपको मिले का बहुत समाला चांस रही।
1: अच्छा हो जो हेल्पलाइन नंबरवा जो बतौला है, तनी एक बार तनी सब फिर से बता देता ता तनी सबके जानकारी हो जात।
0: देखा भैया वो हेल्प नाई लाइन बा 1930, ये
1: अच्छा
0: नंबर पर भैया बहनी जे भी धोखाधड़ी के शिकार हो था ऊपर 24 घंटा के अंदर अगर शिकायत दर्ज करा देता तो ओकर रुपया भैया मिले का पूरा चांस रही।
1: अच्छा एक चीज और हो बिरजू भैया जानत हुआ, है जोन बैंकवा में न जा कर के

0: सब लोग जाकर के एटीएमवा से जोन पैसवा निकालत बाड़ा है ना,
1: हम्म।
0: तो हूँ तो जाते हो बे ना कि लेकवन गदेलवन के भेजाला।
1: देखा भैया, अगर एटीएम में जात हुआ तो पीछे आगे ताकला कि एक से अधिक आदमी न रहे उनमें,
0: अच्छा
1: काहे से कि उनमें भैया बड़ा मीठे मीठ बोल के ना आ तुहार गोपनीय जानकारी ले ली हैं, आए आप ठगी के शिकार हो जी बा।
0: अच्छा एक चीज और है, टीमवा में भैया ने लिखलो रहेला कि
1: हम्म।
0: एमन एक से दुई मनई प्रवेश न करें, एकर सावधानी भी रखे के चाहिए। और मनिया जब अपन पिन नंबरवा डालल जाला तो के अपना ढुका के डाले के चाहिए।
1: अरे भैया एकदम आड़ल उत्कला गरगमछा से।
0: बिल्कुल कहला भैया। अच्छा एकरे साथे साथे बैंक से भी अगर कोनो सूचना आवे ले, ये
1: हाँ
0: जानत
1: हाँ
0: हुआ,
1: हाँ भैया।
0: तो बैंक से कोनो सूचना आवे ले तो बैंक वाले जोन भैया लोगन बाड़न ना, तो कोनो कागज पत्तर जानकारी लेवे के बाद तो कहिए कि भैया ऐसा है कि खाता तोहार हमरे बैंक में बा, आ एमन ई काम करे के बा, एमन सुधार करे के बा, है ना, तो तू आधार और पैन लेकर के यहाँ आवा तो एकर सुधार होई।
1: अरे भैया बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा चिट्ठी के जरिए आपके सूचना दे आ तब आपके बैंक बुलाई, आ आप अपन जौन भी चीज शिकायत जाए के दर्ज करवा आ उकर समाधान आराम से हो
0: अच्छा
1: जाए।
0: एक चीज और है ना कि सरकार तो सुरक्षा बदे काम कैलस, माने आधारों के जोड़ देलस, पैनों के जोड़ देलस, बैंक का खाता जोड़ देलस, मोबाइल नंबरों जोड़ देलस, लेकिन भैया ओकर दुरुपयोग न करे लगना कुल।
1: भैया देखा कुछ काल ऐसा आवाला साइबर अपराध के अंदर कि वो भैया पुलिस आयुक्त बन के धमका के तुहार जानकारी ले चाहिए, तो आप डरे मत।
0: बिल्कुल मत डरन
1: हाँ
0: भैया।
1: एकदम आप शिकायत दर्ज करावा, आप एकदम निडर रहें,
0: अच्छा
1: ये ना कि आप डराए के आ जल्दी जल्दी अपन जितनी भी गोपनीयता है बता दे तो आप भैया ठगी के शिकार तो
0: अरे
1: हो
0: भाई
1: जी
0: जितना
1: बा।
0: तू सूचना अपना बताए देबा तब तू अपन काम कई जाइ है ना, ओके डरे ना, एक चीज और करे तुरंत अपन मोबाइल के बंद कर दे।
1: तुरंत भैया अपन मोबाइल के स्विच ऑफ करके आप सुरक्षित हो जाएं।
0: अच्छा
1: आप
0: ये
1: देखें
0: बिरजू भैया यही
1: हाँ।
0: से कहल जाला, केहू हीरा चोर केहू खीरा चोर, अपराध चाहे छोट हो चाहे बड़ो, अपराध तो अपराध होला।
1: अपराध आ देखा ये बुझान भैया, संगे संगे अपने तो अपने अपने गांव जवार के भी आप सजग करें, अपने भी सजग रहें। आ देखें ये भैया आप बातचीत तो हमन कहोबर करी, लेकिन ये है
0: बिल्कुल
1: कि आज के बातचीत में अरहर के खेती के उन्नत तकनीक पर आ डॉक्टर सुरेश कुमार कन्नौजिया और राकेश कुमार यादव को बातचीत है, आप पंच लोग
0: अच्छा
1: सुने।
2: किसान भाई लोग, आज अपने पंचायती में डॉक्टर सुरेश कुमार कन्नौजिया जी आयल हूँ। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष हुआ कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा जौनपुर में। आज आपसे हम बात करब अरहर के खेती के उन्नत तकनीक का होला ये विषय पर। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका अपने पंचायती में स्वागत है।
3: नमस्कार,
2: डॉक्टर
3: किसान
2: साहब
3: भाइयों को राम राम।
2: जी, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये जानना बात चाहल आपसे हम जो है कि जौन किसान भाई लोग अरहर खेती करल चाहते हुआ
3: जी
2: ओकरे लिए जो ना कि मिट्टी का चयन कैसे करें।
3: देखिए, अमूमन जो ये अरहर की खेती है, रबी की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी खेती है,
2: जी
3: और इसको हमेशा जो है जो अपलैंड होते हैं
2: जी
3: वहां पे इसका चयन करना चाहिए। और दूसरा जो है दोमट मिट्टी से, बलुई दोमट मिट्टी
2: जी
3: अच्छी होती है
2: जी
3: और जिसमें खाद का जो प्रयोग होता है
2: जी
3: उसको पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों को करना चाहिए, जिससे कि उसमें पानी सोखने की क्षमता बढ़े और वो जो है अच्छे से वृद्धि विकास करके आपको उत्पादन।
2: तो जैसे अरहर का जैसे पौधा लगाओ से पहले का ओकर मिट्टी जो न हुआ ओकर शोधन करे की जरूरत पड़े ले।
3: एकदम होता क्या है कि बहुत से किसान भाई ऐसे डायरेक्ट ले जा करके बीज की बुआई कर देते हैं,
2: जी
3: लेकिन बीज और मिट्टी का शोधन बहुत ही जरूरी होता है। 90% फसलों पर जो रोग व्याधि इंसेक्ट पेस्ट आते हैं
2: जी
3: वो या तो बीज जनित होते हैं या मिट्टी जनित होते हैं, तो
2: जी
3: इसलिए यहाँ पे हमें मिट्टी का शोधन जरूर करना चाहिए। और मोस्टली जो है हमारा जो अरहर क्रॉप है इसमें उकठा रोग बहुत ज्यादा लगते हैं, तो उसमें उकठा और रोधी प्रजातियों का चयन करते हैं। दूसरा
2: जी
3: मिट्टी का शोधन
2: जी
3: बहुत जरूरी होता है, और मिट्टी के शोधन में जैसे कि आप कंपोस्ट खाद ले लीजिए
2: जी
3: और उसमें 70 से 80 किलोग्राम कंपोस्ट खाद ले लीजिए और 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी करके
2: जी
3: आता है, फफूंदीनाशी है,
2: जी
3: और उसको मिला करके 1-2 दिन के लिए आप रख के छाया में अंतिम जुताई के समय
2: जी
3: खेत में बिखेर करके जुताई करके पाटा लगा कर तब बुआई करिए, तो उससे मिट्टी जो है हमारी शोधित हो जाती है, तो मिट्टी जनित जो रोग है वो
2: जी
3: वहीं पे रुक जाता
2: तो डॉक्टर साहब जैसे ही पूर्वांचल का जोन अपन क्षेत्र हुआ इनमें जैसे जोन प्रजाति अच्छा मानल जाले ओकर

0: कौन कौन नाम हुआ?
1: हाँ, यहाँ पे किसान भाई को इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
0: जी
1: मार्केट में बहुत तरह के प्रजातियां आ गई हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अनुसंधान की प्रजातियों का प्रयोग करिए, जिसमें हमारे दलहनी अनुसंधान केंद्र जो IIPR कानपुर है, उन्होंने IPA 203 निकाला है, जो बहुत अच्छी वेराइटी है और वो उकठा जनित रोग से भी अवरोधी है, और उसका चयन किसान भाई करते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नरेंद्र अरहर 1 और नरेंद्र अरहर 2, ये जो दो प्रजाति है, ये जो है ये आपका 240 से 250 दिन में तैयार हो जाता है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 22 से 28 क्विंटल के आसपास मतलब पोटेंशियल है, लेकिन तब भी किसान भाइयों को 22 से 23 क्विंटल तक मिल जाता है, और ये इस प्रजाति को जरूर चयन करें। दूसरा, आजकल साल भर खेत लोग नहीं अरहर के लिए बजाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है हमारा पूसा जो अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली है, उन्होंने पूसा अरहर 16 जो है निकाला है, और उसमें जो उत्पादन का जो है ये फसल जो है 120 से 125 दिन में तैयार हो जाता है। इसको तैयारी करने के बाद आप जो है सरसों की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं, आलू की खेती कर सकते हैं, तो ये जो है अच्छी प्रजाति है और उत्पादन भी उस लिहाज से बहुत ही अच्छा है। इसमें उत्पादन हमारा जो प्राप्त होता है पूसा अरहर 16 का, वो 15 से 16 क्विंटल मिल जाता है प्रति हेक्टर की दर से।
0: ये जो प्रजाति डॉक्टर साहब बतौनी है, इस सब का बाजार में उपलब्ध है, किसान भाई लोग चाहे तो?
1: हाँ, बाजार में भी उपलब्ध है, कि हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है
0: जी,
1: वहाँ से भी, क्योंकि सीड प्रोडक्शन का काम भी कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए ही बना हुआ है, तो वहाँ पे ये प्रजातियों का अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, जिसको लेकर के किसान भाई जरूर इस प्रजाति का प्रयोग करेंगे तो निश्चित उनको अरहर में जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा, उनका अच्छा सब कुछ रहेगा
0: जी। तो ये बीज इस्तेमाल किसान भाई लोग प्राप्त कर लेना, अब जैसे अब खेत में अगर लगावल चाहता हूँ अरहर के, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितना बीज की जरूरत पड़े ले?
1: हाँ, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बीज का बीज की मात्रा है, यही पे किसान भाई कभी कभी बीज ज्यादा प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी कम भी प्रयोग कर देते
0: जी
1: हैं। दूसरा, बीज जो प्रजाति आप लीजिए, इसके पहले सीड रेट के पहले किसान भाई को ये चाहिए कि बीज को जैसे 100 बीज लेकर के जूट के बोरे में उसको भिगो करके दबा दीजिए, और 48 घंटे के बाद आप देखेंगे, 48 से 56 घंटे बाद उसमें कुछ बीज जमेंगे, कुछ नहीं जमेंगे, तो उसको अगर गिन लेते हैं, और गिनने के बाद जमे हुए बीज आपके 90 से 95 हैं, तो आप समझिए कि वहां पे जो बीज सीड रेट हम लोग बताते हैं वो जो है बहुत ही सही रहता है, और जिसको किसान भाई लगाएंगे तो उनको जो है उत्पादन अच्छा मिलेगा, जिसमें 12 से 15 केजी पर हेक्टर के हिसाब से बीज दर निर्धारित किया गया है, जिसमें सीज बीज की साइज पे ही बीज का मात्रा बढ़ भी सकता है, घर जैसे बड़े दाने हैं तो उसमें थोड़ा सा बीज की मात्रा बढ़ जाती है, 14 केजी तक बीज को ले जाते हैं, जिससे कि प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन होता है, उनको उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है
0: जी। तो बहुत बार किसान भाई लोग जैसे खेत में छीट के जोत दिया, तो वो विधि ठीक होला कि और कौन विधि है कर्म जो?
1: हाँ, देखिए बुआई का सबसे बढ़िया जो तरीका है, जब पौधे की चारों तरफ हवा पानी और टेम्परेचर जब मिलता है, तो उसमें चारों तरफ से फूल फली और सब कुछ लगता है, तो उत्पादन अच्छा मिलता है। तो इसमें जो किसान भाई छिटकवा में खेती करते हैं, कोशिश करें कि वो न करें
0: जी।
1: और दूसरा जो है, लाइन सोइंग में अगर किसान भाई हमारे खेती करते हैं
0: जी,
1: तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, और लाइन से लाइन की जो दूरी रखना चाहिए 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए
0: जी,
1: 30 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर अगर वो मेंटेन करके खेती करते हैं, तो उनको प्लांट प्रोपगेशन भी अच्छा रहेगा, उसमें ब्रांचिंग भी अच्छी आएगी, उसमें फूल फली सब कुछ ज्यादा आएगा, और 10% उनको ज्यादा उत्पादन मिलेगा।
0: तो एक लिए का कौनो यंत्र है का कि जैसे?
1: हाँ, इसके लिए जैसे कि आपको जो सीधी बुआई के लिए सीड ड्रिल है
0: जी,
1: जिसमें हम जो है सीधी बुआई उसमें सारी जो मैंने बताया दूरी, पत्ती से पत्ती दूरी, पौधे से पौधे की दूरी वो मेंटेन हो जाता है, जिससे कि बुआई करें। दूसरा, अगर वो चीज नहीं है, सीड ड्रिल नहीं है, तो किसान भाई पोटैटो में जैसे रिज बेड प्लांटर रखे हैं, तो उसे

0: पूरी मेड़ी पहले के खेत में बीज को बिखेर दें, खाद बीज को, और इसके बाद जो है मेड़ी बना लें पूरे खेत में। तो उसमें बाद में जब वो जम जाए तो पौधे से पौधे की दूरी जो मेड़ी पे रहे उससे 10 से 15 सेंटीमीटर मेंटेन करते हुए बाकी जो ज्यादा मात्रा के पौधे हैं उनको बाहर कर दें। तो उससे जो है एक लाइन में भी हो जाएगा और पौधे से पौधे की दूरी हो जाएगी। और दूसरा, मेड़ी पर बुआई करने से उनको फायदा ये होगा कि जब पानी बरसेगा तो पानी लगेगा नहीं, और पानी लगेगा नहीं तो उकठा नहीं आएगा, तो वो पानी नाली से होते हुए बाहर निकल जाता है, तो जिससे कि उनका जो है फसल सुरक्षित हो जाता है। प्लस जो है जड़ क्षेत्र को एयर टेम्परेचर मॉइस्चर अच्छे से मिल जाता है, जिससे उनका वृद्धि विकास बहुत अच्छा होता है, ब्रांचिंग अच्छी होती है और उत्पादन उनको अच्छा मिलता है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब जैसे अरहर का पौधा लग गया, अब ओकरे बाद जैसे किसान भाई लोगों में कुछ खाद वगैरह भी देवल चाहत हुआ,
0: बुआई
1: कब कब दें और कौन खाद प्रयोग में लिए?
0: जी, सबसे पहले तो बुआई के समय जो बेसल में हम खाद का प्रयोग करते हैं उसमें पोटास इसमें नहीं दिया जाता है, और नाइट्रोजन जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं, और फास्फोरस जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के, और तीसरा जो उर्वरक है वो सल्फर है। सल्फर भी बहुत जरूरी है दलहनी फसलों में देना, जो 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप दे करके बुआई करते हैं तो आपका जर्मिनेशन भी अच्छा रहेगा और पौधे का वृद्धि विकास भी अच्छा। दूसरा, जो खाद की बात आप कर रहे हैं, खाद की बात में खेत की तैयारी में ही अगर आपके पास खाद की उपलब्धता है तो जिस खेत में आप इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो उसमें 2 से 2.5 ट्राली खाद डाल करके और खेत को बढ़िया सा मिला करके तैयार करके फिर बुआई करेंगे तो आपका जो पौधा है और खेत है वो मजबूत होगा, आपको उत्पादन अच्छा।
1: जो 2 से 3 ट्राली बताओ थे, तो ये जैविक खाद रही?
0: ये जो है कंपोस्ट खाद होता है गोबर का, और जैविक भी कंपनियों ने जैविक भी खाद बनाया है जिसे राइजोबियम कल्चर है
1: जी।
0: तो राइजोबियम कल्चर से खाद को अगर ट्रीट करके हम बोते हैं तो भी उनको जो है बहुत अच्छा मतलब उन मिट्टी में उर्वरता बढ़ जाती है जिससे उनका वृद्धि विकास अच्छा हो जाता है। दूसरा, बहुत सी कंपनी ने बनाया है जैसे जाइम टाइप का बनाया है तो वो भी यूज करके हम बुआई करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी का जो जीवांश कार्बन है आज के जितने भी हम लोगों ने देखा है किसानों के यहाँ 2 से 3% है, 0.2 से 0.3 के आसपास ही जीवांश कार्बन है। जीवांश कार्बन ही मिट्टी का जो है मिट्टी का 0.8 होना चाहिए, 0.8 से 1 तक होना चाहिए, लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमने खाद को देना फसल चक्र को अपनाना ये हम लोगों ने छोड़ दिया है, जिसके वजह से हमारी मिट्टी का जीवांश कार्बन घट रहा है, मिट्टी बीमार हो रही है, जिसके वजह से हमारे वृद्धि विकास उत्पादन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो अगर वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं, उन्नत तरीके से खेती कर रहे हैं तो खाद को जरूर डालें जिससे कि उसमें ह्यूमस बढ़ेगा, जीवांश कार्बन बढ़ेगा, तो मिट्टी हमारी मजबूत होगी और जीवांश कार्बन 0.8 के आसपास जाएगा तो निश्चित वो दिन दूर नहीं है कि हमारे उत्पादन पोटेंशियल यील्ड के आसपास उत्पादन मिले।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे जब पौधा जब अरहर जब बड़ा होला जब फूल ले वाला तो बहुत बार देखा में आवला कि फूल झड़े लगेला,
0: हाँ,
1: तो ये कहां बदे होला?
0: ये एक्चुअल में क्या है ना कि जैसे पौधा का इसमें बुआई पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ किसान 15 जून से 15 जुलाई के बीच में हम लोग बोने का टाइम बताते हैं, लेकिन मौसम को भी हमें आपको देखने की जरूरत है क्योंकि मौसम हमारा थोड़ा सा अप हो गया है, जैसे कि बरसात 20 जून के बाद हो जाता था लेकिन आज के डेट में आप देखें तो बरसात अभी हो नहीं रहा है। तो जैसे ही कोशिश करिए कि बारिश स्टार्ट हो जाए, बारिश स्टार्ट होने के बाद धरती ठंडी हो जाए और ये लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में ये सिनेरियो आ जाता है, और अगर उस समय हम 8-10 जुलाई के अंदर अगर हम बुआई करते हैं तो ये जो फूल और फ्लावर जो आते हैं ये दिसंबर के लास्ट तक आते हैं, और क्योंकि दिसंबर का शुरुआत और 25-20 दिसंबर के बाद देखेंगे कोहरा आता है तो कोहरा में ये समस्याएं आती हैं जिससे कि फूल के पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं, डंठल जिससे वो जुड़ा रहता है वो ड्राप होने लगता है, तो टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट आता है जिसकी वजह से, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसमें एक आनुवांशिक गुण है, ये 2 से 3 बार फूल झड़ने के बाद भी फूल आते हैं और उसमें फली लगती है और उसका प्रॉपर वे में अगर हम लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। कोशिश करिए कि बुआई जो है 15 जुलाई के 8 से 15 जुलाई के आसपास करें।
1: जी, तो डॉक्टर साहब अब तो जैसे फूल लग झड़ गए 2-3 बार और फली लगी, फली के बहुत बार देखल जाला कि जो

0: कीड़ा कुछ लग जाना तो छेद दे। हाँ,
1: बहुत अच्छा आपका प्रश्न है।
0: अब छेद दिए तो पैदावार कम हो जाए।
1: जी जी, ये बहुत ज्यादा आ जाती है।
0: ये काहे होला, एक रोकथाम कैसे हो?
1: हाँ, देखिए ये बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है
0: जी।
1: ये जो है होता क्या है कि हम लोग जब फली में छेद देखते हैं तब हम कीटनाशी का प्रयोग करते हैं।
0: जी जी,
1: जबकि हमारा जो नुकसान होना था, कीड़ा उसके अंदर जाना था, फली को, फली के अंदर दाने को खाना था, उसे निकल जाना था, वो हो चुका रहता है। और हम जो है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, तो वो जो इंसेक्टिसाइड का जो हम प्रयोग करते हैं, हमें जब 50% फली आवे और 50% फ्लावर में रहे, उस समय एक जो है इमिडाक्लोप्रिड आता है या डाइमेथोएट, इसका 1 से 1.5 ml दवा का घोल बनाइए और छिड़काव, और एक छिड़काव इस समय करना, दूसरा जब पूरी तरह से फली आ जाए तब आप इसका छिड़काव कर देंगे, तो पूरी तरह से आपकी फली जो है सही होगा। इंसेक्ट जो घुसते हैं, जो अंडे पीपा उसके अंदर दे देते हैं, वो दवा के असर से वहां से भाग जाएंगे और आपकी फली जो है सही होगी और उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा और तिरछी कम से कम में आ जाएगा।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, बहुत लोग किसान भाई लोग के दिमाग में ये रहा कि अरहर में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा ना हो ले।
1: हाँ जी,
0: तो का सिंचाई में जरूरत हो कितना बार?
1: देखिए, अमूमन इसीलिए बरसात में इसकी खेती की जाती है, बारिश का सीजन है, और इसमें शुरुआत में पानी तो मान लीजिए चल जाता है, लेकिन जब वेजिटेटिव ग्रोथ में पानी अगर लगता है तो ये उसमें जो है दिक्कत आती है, तो सिंचाई कम से कम 0 से 1 तक करते हैं। तो इसमें एक सिंचाई या वेजिटेटिव ग्रोथ जब होता है, मतलब कि 40 से 45 दिन बाद बारिश नहीं हो रही है, तब कर दीजिए। दूसरा जो है सिंचाई फूल लेने से पहले आप, तो ये जो है 2 सिंचाई अगर आप कर देते हैं तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी रहेगी, उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा।
0: जी, तो बहुत बढ़िया नगद जानकारी जो है कि आप हमारे किसान भाई लोग के देनी है।
1: जी जी,
0: डॉक्टर सुरेश कुमार कनौजिया जी, आप अपने पंचायती में है ना, अरहर के खेती के उन्नत तकनीक का होले आ कैसे उत्पादन ज्यादा किसान भाई प्राप्त कर सके ना, ये विषय पर आप इतना बढ़िया जानकारी देना कि हमारे किसान भाई लोगों के, एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: बुझाउन भैया,
3: बिरजू भैया,
2: देखा भाई बतकही तो बड़ा बढ़िया भइल,
3: अरहर के खेती के उन्नत तकनीकी के बारे में। अच्छा, एक चीज और है, जानते हो कि डॉक्टर भैया ये बतौलन है,
2: अच्छा,
3: कि रासायनिक खेती के जगह रासायनिक खाद के जगह कार्बनिक खेती और कार्बनिक खाद का प्रयोग करा।
2: हाँ भैया, बल्टिया वाली खदी आजकल बड़ा चलन बहो, किसान भैया लोग बड़ा डालत हुआ
3: अच्छा, एक चीज जानत हुआ, जब कार्बनिक खाद जब खेती में डलाले ना, जब माटी में डलाले ना, तो उन कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाले और ओकर उर्वरा शक्ति बराबर यार हो जाले, एकर भी ध्यान रखे के चाहिए। और हमारे पंचायती में जो भी किसान भैया सुन ले हुए अरहर का उन्नत खेती के बारे में, तो ओकर जरूर
2: दिखाए थे बोतल में नैनो यूरिया का भी किसान भैया लोग छिड़काव करत हैं।
3: बिल्कुल करत हूँ, बड़ा फायदेमंद भी बा। अच्छा ये भैया, बात कही भी हो गई, डॉक्टर भैया से बातचीत भी हो गई, डॉक्टर सुरेश कुमार कनौजिया से राकेश कुमार यादव बड़ा फरिज पूछना है और बड़ा फरीज फरीज बताओ।
2: बहुत फरिया के एकदम खोद खोद के पूछना भैया एक एक बात।
3: ए भैया, अभी तो होगल कुछ मर मनसायन का भी मन करत बा।
2: देखा भैया, अपने पंचायती में जब ले ढोलक मजीरा के समय ला ना, अथवा सुरना जब बजा ला ना, तब ले आनंद नावला। देखा पंच भैया लोग हमारे एकदम टकटकी लगा के आंख पसार के जोतो कि लोग खाली हमन के बतिये में अझुरई हैं लोग कि हमन कुछ बजवई हैं
3: मरमसान करवई हैं।
2: तो ये भैया हेमंत कुमार श्रीवास्तव का पूर्वी गीत है, हम अनु सुनल जाओ, आ पंच भैया लोग एकदम मन से सुना।
3: बिल्कुल सुनवा दें भैया।

0: बुझाउन भैया।
1: हाँ बिरजू भैया,
0: देखा भैया, हेमंत कुमार श्रीवास्तव के पूर्वी गीत रहे,
1: अब बड़ा भैया मन तो बड़ा
0: आ
1: गदगद हो गया ना।
0: देशवा हमार फुलवा के दोना, पंच लोग सुन लेना। तो बिहानी कार्यक्रम भैया तनी का हो के पंच लोग के अब बताऊँ।
1: ये बिरजू भैया सवेरे 6:05 पर खेती की बातें में, विषय ज्वार की खेती के बारे में जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह। आ संजीव के का सुनाओ तो भैया।
0: देखा भैया, सांझ की बेला में 6:30 पर कृषि जगत में अपने बातचीत में विषय में कृषि में AI तकनीक का उपयोगिता के बारे में डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया की बातचीत हुई। आप पंच लोग सुनिए। ये भैया
1: बिल्कुल
0: देखा वो बेला हो गई लहन के चले का,
1: बिल्कुल हो गेल भैया, बेला चले का
0: तब बुझाओ
1: और
0: भैया पंचो
1: जो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: नाम।

0: किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के माध्यम से आप अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। तो इस बार आप हमें फोन कर सकते हैं गठिया से संबंधित समस्याओं पर जानकारी के लिए। विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष कुमार उपाध्याय हमारे साथ होंगे और रिकॉर्डिंग का समय होगा गुरुवार 25 जून 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच, और इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 28 जून रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो बिना देर किए हमें फोन करें 0542221052 पर। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में फिल्म चितचोर का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, सोनू निगम और जसविंदर नरूला की आवाज़ में। फिल्म है सूर्यवंशम, गीतकार समीर और संगीतकार अनु मलिक।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में फिल्म सुहागरात से। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, हमें खेद है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से हम आपको फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम सुचारू रूप से नहीं सुनवा सके। मीडियम वेव 241.5 चेयरमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना लालपुर पांडेपुर कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार मनीष चंद्र विश्वकर्मा ये

5 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं मनीष चंद्र विश्वकर्मा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु लगभग 34 वर्ष, लंबाई 5 फुट 7 इंच, बोलचाल सामान्य है, ये हिंदी भाषा अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। यदि आपको मनीष चंद्र विश्वकर्मा के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर थाना लालपुर पांडेपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है, ये सूचना हमें प्राप्त हुआ है थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी से। दिशान 18 अप्रैल सन 2026 से लापता है। दिशान

आलमपुर आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी के निवासी हैं। दिशान के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ है, शरीर एकेरा बदन है, लंबा चेहरा है। इनके माथे और ठोड़ी पर कटे का निशान है। ये हिंदी भाषा अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। यदि आपको दिशान के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। कोई भी व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है और ये सूचना हमें प्राप्त हुई है थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से। नीतू मिश्रा पत्नी दीपक मिश्रा निवासिनी जगतपुर रोहनिया वाराणसी की हैं। ये नीतू मिश्रा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 24 वर्ष, लंबाई 4 फीट 5 इंच, ये भोजपुरी भाषा अच्छे तरीके से बोलती हैं, रंग साफ है। यदि आपको नीतू मिश्रा के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। कोई भी व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटना स्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोप वे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तनवीर फातिमा। और अब समा

0: विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
2: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
0: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
3: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
5: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
4: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली

0: प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम ₹50 निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र ₹50 में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
2: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले 4 दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म कलयुग का गीत। आवाज राहत फतेह अली खां की है। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के माध्यम से आप अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। तो इस बार आप हमें फोन कर सकते हैं गठिया से संबंधित समस्याओं पर जानकारी के लिए। विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष कुमार उपाध्याय हमारे साथ होंगे और रिकॉर्डिंग का समय होगा गुरुवार 25 जून 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच। और इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 28 जून रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो बिना देर किए हमें फोन करें 0542222 1052 पर। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और हंस राज हंस की आवाज में फिल्म कच्चे धागे से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार नुसरत फतेह अली खान।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में फिल्म बॉम्बे से। गीतकार हैं महबूब और संगीतकार ए आर रहमान।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, रूप कुमार राठौर और साबरी ब्रदर्स की आवाज़ में फिल्म गुनाह से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार साजिद वाजिद।

0: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के माध्यम से आप अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। तो इस बार आप हमें फोन कर सकते हैं गठिया से संबंधित समस्याओं पर जानकारी के लिए। विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष कुमार उपाध्याय हमारे साथ होंगे और रिकॉर्डिंग का समय होगा गुरुवार 25 जून 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच, और इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 28 जून रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो बिना देर किए हमें फोन करें 0542222102 पर। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर पर इस समय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत कार्यक्रम सुगम संगीत कलाकार हैं अशोक खोसला। आइए सुनते हैं इनकी गाई गजलें।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ और सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं अशोक खोसला।

0: अशोक खोसला की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
1: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के माध्यम से आप अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। तो इस बार आप हमें फोन कर सकते हैं गठिया से संबंधित समस्याओं पर जानकारी के लिए। विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष कुमार उपाध्याय हमारे साथ होंगे और रिकॉर्डिंग का समय होगा गुरुवार 25 जून 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच, और इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 28 जून रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो बिना देर किए हमें फोन करें 0542222 1052 पर। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
0: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म तुलसी का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म गुमराह से। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रवि का।

कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म कल की आवाज़ का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में, फिल्म धनवान से। इस गीत को लिखा है शायर ने और धुन तैयार की है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

आइए सुनते हैं रस माधुरी कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत। गीतकार है मंजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार जतिन ललित, फिल्म है खामोशी और आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: यहाँ के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित

0: तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए

0: सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।

0: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए. और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम. थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज, एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे.
1: मौसम विभाग ने दिल्ली

0: तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mamuti and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for Santa Squad in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the center of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation-building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations

0: नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज के टी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूथी और प्लेबैक गुलुकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बादजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत नैनो की वजह से कमजोर मानसून के इम्कानी असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीकेकार फसलों की बरवक्त मंसूबाबंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताजा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तिजारत पर जोर देते हुए आलमी तिजारत में भारत के रोल का तज्जिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक्किद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट

के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर उबूरी राहत दी जिसमें हाईकोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। सियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील एम आर शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताजा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचम बरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयानात पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरक तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अब नाए हुरमुज में पहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क़यादत ने जारी सिफारती मुज़ाकरात में अहम रियायतें दी हैं जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने वाज़ह किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवाना एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई क्योंकि खित्ते में तेज बारिश धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थी। आईएमडी के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आईएमडी ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार मशरकी मध्य प्रदेश मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया।

कार्यक्रम अंजुमन में आइए सुनते हैं गुलाम अली की गाई गज़ल, रचना संत दर्शन सिंह जी महाराज की है और एल्बम कलाम-ए-मोहब्बत से।

गुलाम अली की गाई इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीत एवं गज़लों का प्रोग्राम अंजुमन अब समाप्त होता है। मिनी वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाले साइक्लिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी कि मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
0: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है, हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी। जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा बच्चों का पढ़ाई से, और पेरेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए। ज़रूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना यही जरूरी नहीं है।

0: तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत
1: जी
0: अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं
1: बिल्कुल
0: जो कि
1: बिल्कुल
0: बच्चों
1: सर
0: को ट्रेन कर रही हैं।
1: जी
0: आप के अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स हैं। जो हमारा गेम है एकदम, उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है
0: जी
1: वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके, यानी कि 15-16 ईयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है, और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। गर्ल्स, हम ऐसा नहीं करते फाइट, जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की हम कराते हैं,
0: जी
1: तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए, और अपना आत्मरक्षा के लिए तो ये है ही अच्छी
0: जी
1: चीज़।
0: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
1: कि 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल्स हैं
0: जी
1: वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे, वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
0: जी तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
1: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे,
0: जी
1: लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता।
0: जी
1: तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं, या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीज़ें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छूट भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30-35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
0: जी मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो। आप बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, आप उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: स्पोर्ट्स खेलते हैं तो
1: बिल्कुल
0: कुछ ना कुछ
1: बिल्कुल
0: डाइट
1: सर।
0: होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूँ कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
1: 5 साल
0: 5 साल से,
1: जी
0: तो आप ये मान के चलिए तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीजों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस, चॉकलेट, चिप्स वगैरह बच्चे खाते, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए,
0: जी
1: यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूंगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीजें उसमें आप उसको प्लस करिए करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप
0: जी
1: 2 किलो जो है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में, क्या नहीं खाना है, तो ये चीजें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
0: ट्रेनिंग की बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती हैं?
1: मैं हूँ क्योर्गी। हमारे अब जो टाइक्वांडो है ना, वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है,
0: जी
1: एक होता है
0: हाँ
1: क्योर्गी, एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योर्गी ही खेला है, तो मैं क्योर्गी ही उनको खिलाती हूँ। क्योर्गी मीन्स होता है फाइट,
0: जी
1: तो फाइट के लिए हमें जरूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इम्प्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट, यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहाँ उनको मारना है, कहाँ कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहां फाइट खेलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें,
0: जी
1: ये चीजें बताई जाती
0: जी
1: है।
0: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है कुछ
1: बिल्कुल
0: इससे, तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इस तरह
1: जी
0: की सुविधा यहाँ पर है?
1: जी जी टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है यहाँ पे, हम लोग कराते रहते हैं हमारे स्टेडियम में भी। एक साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और
0: जी
1: बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारी यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी, कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
0: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13 ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
1: भूमिका जोशी उसमें लड़की का नाम था, सब जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर ए टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
0: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस।

0: इसका भी है, सब एक ही कोच की
1: सब
0: जिम्मेदारी।
1: एक ही कोच की जिम्मेदारी है।
0: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप जाता है रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
1: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है
0: जी
1: वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी दो हाथ दो पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत उनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए,
0: जी
1: मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है,
0: जी
1: कोई इतनी वो इश्यू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें जो होता है ना सुबह से, सुबह 8 बजे
0: जी
1: से जैसे शुरू हो जाता है तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा, इस
0: जी
1: तरीके से तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को,
0: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे
1: नहीं
0: टूर्नामेंट
1: वेट
0: से,
1: एक दिन
0: तो
1: पहले हो
0: उसमें फिर
1: जाता है।
0: घबराने की कोई बात नहीं है उस
1: नहीं
0: पर।
1: नहीं
0: अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने की
1: बिल्कुल
0: जिम्मेदारी
1: बिल्कुल,
0: भी
1: ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे, सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस ग्लूकॉन डी जो है इलेक्ट्रोल्स वगैरह ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
0: टूर्नामेंट के दौरान। जब
1: जी
0: आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
1: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का, कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है कुछ
0: कुछ
1: बच्चों ने वेट
0: बड़ा
1: बढ़ाना होता
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल
1: तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंद ही कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं। और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। तो ये तो हो गया वेइंग से पहले की
0: जी
1: बात, अब आ जाती है फाइट से, तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं। जिस बच्चे की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रोल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीज़ें बोलते हैं, स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे।
0: जी
1: लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं रहती है, अभी जैसे
0: हाँ
1: हम ग्वालापार गए थे यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था, जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप
0: अच्छा
1: की चीजें, और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीजें, तो बहुत सी चीजों का हमें प्रॉब्लम्स जो है मैं फेस करनी पड़ जाती है।
0: जी। साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं। अब आप, मैं चाहूंगा कि बताएं कि कैसे आपका सफर एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया।
1: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था, फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है
0: जी
1: हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला उसको सुनाई नहीं दिया दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है, तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें एटी राजीव सर है बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो
0: जी
1: हमारा करवाते हैं, सो उन्होंने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो उन्होंने मोटिवेट किया, तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया उड़ीसा हो गया सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ क्योंकि अपडेट होना जरूरी
0: जी
1: रहता है,
0: हाँ
1: हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरीशिप कर चुकी हूँ।
0: जी आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत इजी शिफ्ट?
1: मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा
0: जी
1: हार
0: जी
1: सकता है जीत सकता है, मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस

0: करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं. रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है.
1: जी, तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूंगा.
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफी अच्छा रहा है. आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर हैं जो काफी सीनियर हैं, वो बुशान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे. तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है. और काफी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था. हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफी सर है हमारे विजय बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है. और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो है आगे नाम रोशन करते रहे, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले अल्मोड़ा का नाम रोशन करें.
1: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है. एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं तो खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है मैं कहूँगा. तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
0: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं. हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है. तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं. जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है. तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं. और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है. तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ. बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है.
1: ये थी वंदना सिंह, और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही. आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं. तो अखिलेश, बात यहीं से शुरू करते हैं, आपकी नेशनल चैंपियनशिप की, जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात ये आती है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल प्लेयर रही हैं, तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का.
1: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफर आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है. तो उसके लिए बस अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, टेम्प्ररी पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो. तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ़ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है. तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज़ में एक्सेल करना है, अच्छे से बेस्ट देना है. तो टफ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप थी. और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है. मेहनत करते करते
1: आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी हम कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं. लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहाँ पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता. तो ये मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस?
2: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैंपियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए. तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैम्पियनशिप्स में और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैम्पियन बना मैं उस टाइम पे. और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया. और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का.

0: तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया की बेस्ट कोचेस के साथ।
1: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको, मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
0: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है। अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
1: वहाँ पर जब आपके कोचेस होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पे आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, आप जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेस अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली, जिन कोचेस से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
0: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर। जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारी एक अलग रिलेशन होता है जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे सब पता होता है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़े अलग कोचेज़ मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है। पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो बस इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कोच तो अपना कोच ही होता है लास्ट में।
1: जी, इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, अब जब आप पहली बार फाइट करने गए तो क्या था, कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं कि
0: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती होती है।
1: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
0: मेरी पहली फाइट चाइना से थी। हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो प्लेयर्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि जो और कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं। तो उन एक उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है, उनकी फैसिलिटीज़ क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती। भले टैलेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है
1: जी,
0: पर
1: मैं ये जानना चाहूंगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका
0: चाइना।
1: चाइनीज
0: हाँ
1: था, तो आप कैसे उसको फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको कि क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहाँ उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ?
0: वही गेम पढ़ना था उसका। सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया। वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहाँ पे एडवांटेज लिया, वहाँ से पॉइंट निकाला।
1: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहां पर?
0: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
1: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
0: चाइनीज़ अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था,
1: अच्छा,
0: कोरिया से मैं हार गया था।
1: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहाँ लैक करें?
0: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था,
1: अच्छा,
0: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा, हाइट में भी बहुत ज़्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
1: टेक्निक वाइज
0: टेक्निक
1: आप
0: वाइज मैं कहूँगा
1: टैकल कर रहे थे
0: कि
1: मतलब उनको?
0: हाँ, टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल वो स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
1: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है?
0: अभी नेक्स्ट मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ खुद पर, बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को। और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफ़ी सारी रेलवे इन सब चीज़ों में जॉब मिल जाती है
1: जी
0: इजीली।
1: जी
0: हाँ।

0: उसके साथ हम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक
1: जी
0: तरीके से।
1: तो अभी फिलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
0: फिलहाल तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए तो अब कंपटीशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? अब आप शिफ्ट कर
0: है।
1: रहे हो तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पे कुछ
0: मैं
1: किया हो?
0: विक्रम भंडारी सर।
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की? उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो क्या चीज़ें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
0: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती हैं और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
1: अच्छा, स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है आपको, उतनी देर रिंग में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
0: स्टैमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टैमिना बिल्ड होता है।
1: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया। माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
2: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
3: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी। और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रेकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं,
2: जी
3: लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की, और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं, फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
2: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहाँ कहाँ तक की यात्राएं की हैं?
3: अनुभव तो साइकिल में जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है,
2: जी
3: तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है, और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती हैं, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे,
2: जी
3: और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया, और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
2: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
3: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं, और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं,
2: जी
3: लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है और यही मैंने महसूस।
2: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन

0: अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके। और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
1: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: दर्पण दर्पण दर्पण
1: राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति थी, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथियों का शहनाई वादन, राग है गोरख कल्याण।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथियों का शहनाई वादन, राग था गोरख कल्याण। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
1: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के माध्यम से आप अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान

0: माध्यम से आप अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाते हैं बस एक फोन कॉल के जरिए। तो इस बार आप हमें फोन कर सकते हैं गठिया से संबंधित समस्याओं पर जानकारी के लिए। विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष कुमार उपाध्याय हमारे साथ होंगे और रिकॉर्डिंग का समय होगा गुरुवार 25 जून 2026 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच, और इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 28 जून रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो बिना देर किए हमें फोन करें 0542222102 पर। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान

अल्बानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।